मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपकी मित्रिला आपके साथ हूँ। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला कहा कि अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षित डॉक्टरों के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS 5वीं की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम
3: असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है।

0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान से।

अमंत्रिका और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आलेख और वाचन स्वर है सुमित गौतम का।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: गांधी जी और उनके धर्म विषयक सिद्धांतों को समझने के लिए हमें धर्म की प्रचलित परिभाषा से अलग हटकर देखना होगा। गांधी जी का धर्म व्यवहारिक रूप से जितना सरल दिखाई देता है, उससे अलग गांधी जी के धर्म का आध्यात्मिक रूप उतना ही गूढ़ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, राजनीति गांधी जी को लील तो नहीं सकी, किंतु उसने उनके असली रूप पर कुछ झीना पर्दा अवश्य डाल दिया, जो उनके मोक्ष लाभ के बाद से सनेह सनेह उठ रहा है। राष्ट्रों को स्वाधीन करने वाले अथवा नए राज्य स्थापित करने वाले महापुरुषों की पंक्ति में बैठाकर हम गांधी जी को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। राजनीति का पात्र अत्यंत छोटा है, उसमें सागर क्या कभी आ सकता है? गांधी जी राजनीति के पुरुष नहीं थे, धर्म के नेता, मनुष्य के उद्धारक और नए मूल्यों के संस्थापक थे। उनके वास्तविक रूप के विषय में दूसरों को कोई भ्रम रहा हो तो रहा हो, किंतु गांधी जी को स्वयं कोई भ्रम नहीं था। बहुत से राजनीतिज्ञ हुए जो धर्म के परिधान में छिप कर चलते थे। गांधी जी शुद्ध धार्मिक मनुष्य थे, जिन्हें राजनीति के वेश में रहना पड़ा। कवि रामधारी सिंह दिनकर आगे लिखते हैं, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वेधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध, ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। पुस्तक और तर्कसम्मत ज्ञान में सच्चाई की वह आग नहीं होती जो अनुभव जनित ज्ञान में होती है। गांधी जी ने धार्मिक शक्तियों को खोजा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। कहीं कहीं वह विरोधाभास भी है जो उपनिषदों में मिलता है। उदाहरण के लिए साफ शब्दों में बता देना बड़ा कठिन है कि गांधी जी द्वैतवादी थे या अद्वैतवादी थे, या उनकी भक्ति साकार थी या निराकार पर थी। वे अपने को वैष्णव कहते थे और राम के नाम के जप तथा कीर्तन में उनका बड़ा विश्वास था, किंतु जिस राम का नाम गांधी जी आजीवन जपते रहे तथा जिसका नाम लेते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह राम आखिर कौन था, यह विवाद का विषय है। गांधी जी कहते हैं, मेरे राम हमारी प्रार्थनाओं के राम ऐतिहासिक राम नहीं है, दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा नहीं है, यह तो सनातन है, अजन्मा है, अद्वितीय है, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं से सहायता और वरदान मांगता हूँ। उनके इस विश्वास का दूसरा पक्ष सामने तब आया जब एक जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया, कहने को तो आप ये कहते हैं कि आपके राम दशरथ के राम नहीं है, फिर ऐसा क्यों है कि आपकी प्रार्थना में सीता राम और राजा राम शब्द बार बार आते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में एक टिप्पणी लिखी, यह ठीक है कि राम धुन के क्रम में सीता राम और राजा राम शब्द बार बार आते हैं, किंतु ध्यान देने योग्य यह बात है कि राम से अधिक शक्तिशाली उनका नाम है। हिंदू धर्म तो महासिंधु के समान है, जिसमें असंख्य बहुमूल्य मोती भरे पड़े हैं। इस धर्म में ईश्वर के अनेक नाम हैं, हजारों लोग असंदिग्ध रूप से राम और कृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि वे ईश्वर के अवतार थे। इतिहास, कल्पना और सत्य हिंदुत्व में सब मिलकर एकाकार हो गए हैं। इनमें से किसी एक को तोड़कर अलग करना असाध्य कर्म है। ईश्वर के जितने भी नाम और रूप कहे गए हैं, मैंने निराकार एवं सर्वव्यापी राम को उन सबका प्रतीक मान लिया है।

इसलिए राम सीतापति तथा दशरथ पुत्र जो चाहे कहो, मेरे लिए तो सर्वशक्तिमान तत्व है, जिनका नाम यदि हृदय में अंकित हो जाए तो मानसिक, नैतिक और शारीरिक कष्ट क्षण में दूर हो जाते हैं।

महात्मा गांधी एक यात्रा, इसका भाग 5 अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में। आलेख और वाचन स्वर था सुमित गौतम का। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। बछड़ों में सफेद दस्त कारण और बचाव, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गाय भैंस के नवजात बछड़ों में छूतदार एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जो बी कोलाई या कभी कभी साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलती है, जिसे सफेद दस्त कहते हैं। यह रोग 3 सप्ताह की आयु में बछड़ों में अधिक पाया जाता है। पैदा होने पर बछड़ों की अवस्थाएं समान होती हैं। पैदा होने के कुछ घंटों पश्चात ही सफेद दस्त आने आरंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बछड़ों में जन्म के समय ही बीमारी लग जाती हैं। दूसरे प्रकार की बीमारियां ब्याने के समय बछड़ों को हो जाती हैं। दस्तों का रंग पीला अथवा भूरा सफेद होता है। अधिक रोग की तीव्रता में खून भी आने लगता है। रोग लगते ही बछड़े दूध पीना छोड़कर सुस्त हो जाते हैं। तापक्रम अधिक होने के कारण बेचैनी होती है। बछड़े खड़े नहीं हो पाते हैं। आंखें अंदर की ओर सिर में धस जाती हैं। कान लटके हुए मालूम पड़ते हैं। घुटनों और टखनों में सूजन आ जाती है। बछड़ों की रीढ़ झुक जाती है। चर्म सूखकर बहुत ही खुरदरी हो जाती है, जो मांसपेशियों के ऊपर स्वतंत्रता से नहीं चलती है। आरंभ में तापक्रम अधिक रहता है, लेकिन जब बछड़ों में कमजोरी आने लगती है तो यह तापक्रम सामान्य तापक्रम से कम हो जाता है। सफ़ेद दस्त की बीमारी प्राय वहीं पर पाई जाती है जहां पर स्वच्छता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जिसके कारण रोग के जीवाणु मुंह द्वारा अतड़ियों में प्रवेश पाकर रोग फैलाने में सहायक होते हैं। कभी कभी यह रोग बछड़ों को खींच न मिलने अथवा अपच और ठंड लगने के कारण भी हो जाता है। इस रोग से बछड़ों के बचाव के लिए पशुशाला से मल मूत्र को हमेशा हटाते रहना चाहिए। पशु के चारे दाने में अकस्मात परिवर्तन नहीं करना चाहिए। पशुओं को फफूंदी लगा हुआ चारा नहीं खिलाना चाहिए। पशुओं के प्रयोग में लाए जाने वाला चारा साफ स्वच्छ होना चाहिए। गाय भैंस के आयन अथवा काचर को साफ रखना चाहिए। बछड़ा पैदा होते ही उनकी नाक साफ करनी चाहिए। साफ तौलिया से पोंछकर सुखाना चाहिए। बछड़ों को हर हाल में नमी, गीलेपन और ठंड से बचाव करते रहना चाहिए। बछड़ों को पर्याप्त मात्रा में खीस पिलानी चाहिए। खीस में गामा ग्लोबिनियम होते हैं, जो बछड़ों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदाय करने में सहायक होते हैं। जन्म से लेकर 24 घंटों तक बछड़ों की आंतें इनका अवशोषण करने में सक्षम होती हैं। बछड़ों को आधा घंटे के बाद खीस पिलाना आरंभ कर देना चाहिए। दूध की अपेक्षा खीस में अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो पेट से मलमूत्र की सफाई हेतु लाभकारी होते हैं। रोशनी हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए। गाय भैंस जब साफ स्वच्छ सूखे हवादार स्थानों पर बछड़ों को जन्म देती हैं, जब यह बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर सभी सावधानी बरतते हुए भी बछड़ों में यह रोग हो जाता है तो सबसे पहले 20-30 मिलीलीटर रेडी का तेल पिलाना चाहिए, जिससे बछड़ों का पेट अच्छी तरह साफ हो जाए। पानी न पिलाकर नमक डालकर चावल का माण पिलाना चाहिए। बछड़ों को दूध न पिलाकर चूने के पानी में ग्लूकोज मिलाकर 4-4 घंटे के अंतराल पर पिलाते रहना चाहिए। रोगी बछड़ों को टाट या कंबल उड़ाकर गर्म रखना चाहिए। पैरों टखनों पर सूजन होने की स्थिति में लिनिमेंट अमोनिया की मालिश करनी चाहिए। बछड़ों को रोग का टीका लगवाना चाहिए। अगर गोबर में रक्त भी आ रहा है तो मेक्साफार्म की 1 गोली और सल्फाग्वानाडीन की 2 गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगर यह उपलब्ध न हो तो डिपेंडाल की गोली देनी चाहिए, जिससे बछड़ों को लाभ मिलता है। बछड़ों को साफ स्वच्छ हवादार स्थान पर रखना चाहिए, जिससे बछड़े स्वच्छ

0: रहेंगे और कोई भी रोग फैलने की संभावना नहीं रहेगी।
1: बछड़ों में सफेद दस्त, कारण और बचाव, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: छे छप छे छपा के छे पानीयों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
5: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
6: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को

0: अथ वार्ताः। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्विस् राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन् इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावज्जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर सम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44,200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पंच विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शांतिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रकटिता। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यम् उद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृङ्खलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे सायं 7 प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् राञ्ची, इन्दौर, हैदराबाद, बेङ्गलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं राजेंद्र कुमार के गाए कुछ लोकगीत। प्रातः 9:00 का समय होता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। 9:30 पर आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अजीत सिंह पटेल का गायन राग होगा विलास खानी तोड़ी। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं प्रातः 10:05 पर। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोता मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11:00 से प्रसारण होता है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, तो 11:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12:00 आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। दोपहर 1:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम इंदौर की प्रस्तुति होगा। लोक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा और समय होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00 और दोपहर 2:30 पर।

ये तो थे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब जान ली हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 6:30 पर और रात्रि 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुना जा सकता है शाम 7:30 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा राग रजनी।

0: एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6 बजे। ये तो था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय 7:10 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा। भोपाल में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव, 20,000 से ज्यादा युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। हरसूद में रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर 52 गढ़ों के राजवंशज हुए सम्मानित। और मंदसौर में आज बलराम कृषि महोत्सव, बड़ी संख्या में किसान होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति मनाली जाएंगी। वहीं 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति हिडिम्बा मंदिर में दर्शन करेंगी और रोहतांग स्थित अटल टनल का दौरा करेंगी। भोपाल के लाल परेड मैदान में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 20,000 से ज्यादा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के इस आयोजन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और एआई तथा रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी उभरती तकनीकों से जुड़े अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कॉन्क्लेव में 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्ष लगाए जाएंगे, जबकि IIT और एम्स के विशेषज्ञ करियर, तकनीकी और मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देंगे। इस कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल और कबीर कैफे की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शिरकत की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि PMGSY का अगला चरण सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि गांवों तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण संपर्क देने पर केंद्रित होना चाहिए। श्री चौहान ने बताया कि देश में अब तक करीब 8,50,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं। श्री चौहान ने कहा कि
1: अब इस क्लाइमेट रेडी कनेक्टिविटी की बात यहाँ आई, क्लाइमेट रिजिलेंट और ग्रीन रूरल रोड्स। अब ये अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, मौसम की चुनौतियां लगातार क्लाइमेट चेंज के इस दौर में आती जा रही। परिस्थितियों में कई बार हम विचार नहीं करते, सड़क सैंक्शन हो, हर एक राज्य की परिस्थिति आपको पता है, तो उसको ध्यान में रख के हम कैसे DPR बनाए, डिजाइन कैसे बने, इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सड़क बनाते समय कैसे पर्यावरणीय दायित्व को हम पूरा करें, उस पर आप विचार कीजिए। मित्रों, स्वीकृति के बाद काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी।
0: गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में PM गतिशक्ति के उपयोग और नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रयोग दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बने हैं और सफल नवाचारों को साझा करने के लिए बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च जैसी वेबसाइट बनाई जानी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि PM गतिशक्ति से प्रदेश की 74,370 किलोमीटर सड़कों, 2,601 सरकारी भवनों और 3,654 पुलों को जियो टैग किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल हरसूद के छनेरा में रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर यादव ने उनके साहस, स्वाभिमान और प्रशासनिक दक्षता को याद किया। इस मौके पर गोंडवाना के 52 गढ़ों के राजवंशजों को पहली बार सम्मानित किया गया और खंडवा समेत 6 जिलों के 3,54,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को 21,34,00,000 रुपये से ज़्यादा का बोनस वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने खंडवा में करीब 143 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
3: ये 8.5 करोड़ के नागरिकों का हमारा परिवार, मध्य प्रदेश का परिवार, एग्रीकल्चर के बलबूते पर मध्य प्रदेश में बदलते दौर में प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। ऐसे समय में जब 10 संभाग के 55 जिलों के 50,000 से अधिक गाँव में तैनात कृषि विभाग के एक एक अधिकारी कर्मचारी की भी हम चिंता करते हैं, जब हम गेहूं का संकलन करते हैं तो देश में नंबर 1 पे पहुंचते, तो बड़ी भूमिका आप सबकी हो, आप सबके माध्यम से, और कोई एक क्षेत्र नहीं, सभी समान क्षेत्र में। सच में ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है।
0: मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व आवास दिवस पर आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश में योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 9 लाख से ज्यादा आवास बनकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। योजना के बीएलसी घटक में बेहतर क्रियान्वयन और अधिक पक्के आवास पूरे करने के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। मंदसौर में आज कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में जिले भर से किसान शामिल होंगे और कृषि विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। महोत्सव में किसानों को खेती की नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और कृषि उपकरणों की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण और कृषक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत विविधतापूर्ण कल्याणकारी व शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में मंदसौर के शासकीय लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय तथा खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग कार्यशाला और विशेषज्ञ संवाद का आयोजन कल किया गया। इसमें युवाओं को करियर मार्गदर्शन, कौशल विकास एवं वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत इंदौर के शासकीय बाणगंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। भोपाल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज करीब 9.5 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। 1 से 19 साल तक के बच्चों को स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, मदरसे और छात्रावासों में नोडल टीचर की मौजूदगी में दवा दी जाएगी। इसके अलावा 20 से 49 साल तक की गैर गर्भवती और गैर धात्री महिलाओं को भी एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3री बार बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि शुल्क जमा करने और आवेदन में संशोधन के लिए 12 अक्टूबर तक का समय रहेगा। ग्वालियर के ऐतिहासिक मोती महल परिसर में अब म्यूजियम ऑफ म्यूजिक बनाया जाएगा, जिसमें संगीत सम्राट तानसेन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत को सहेजा जाएगा। प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 19 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भवन में अलग अलग गैलरी और प्रदर्शनी क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहाँ पर तानसेन के जीवन, संगीत साधना और उनसे जुड़ी स्मृतियाँ प्रदर्शित होंगी। भोपाल प्रेस क्लब की ओर से कल हिंदी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, आपत्तिजनक भाषा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पत्रकारिता के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ पत्रकारों ने बदलते दौर में पत्रकारों को सजग रहते हुए इन चुनौतियों का मिलकर सामना करने की बात कही। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए राजीव सोनी समेत राजधानी के 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मैहर गौरव दिवस पर कल मैहर शहर के फुटबॉल ग्राउंड में 3,430 छात्र छात्राओं ने एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। विद्यार्थियों ने लगातार 9 मिनट 34 सेकंड तक एक लय और अनुशासन के साथ कथक की विभिन्न मुद्राएं प्रस्तुत की। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारी बीके जैन ने बताया कि इससे पहले सामूहिक कथक का रिकॉर्ड 1400 विद्यार्थियों के नाम था। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के तहत 7 देशों से आए 16 विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने कल खरगोन के महेश्वर क्षेत्र के ग्रामीण पर्यटन गांव नावड़ा तोड़ी और बोथू का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने नाव से नर्मदा की सैर की और होमस्टे, खेती, स्थानीय खानपान और निमाड़ी लोक संस्कृति का अनुभव लिया। ग्रामीणों ने पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य से उनका स्वागत किया। वहीं उन्हें केले और पपीते की खेती तथा स्थानीय जीवन शैली की जानकारी भी दी गई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती गतिविधि के चलते जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगन, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग यूनिसेफ के सहयोग से आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। झाबुआ की राणापुर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से पंचायत उप निर्वाचन में कमलेश सिंगाड़ को निर्वाचित घोषित किया गया है। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। मंडला में नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी जिला चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा कटे फटे होंठ और तालू से पीड़ित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इंदौर में पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण माह के तहत गुना के न्यू कलेक्ट्रेट हॉल में जिला स्तरीय शॉर्ट फिल्म और पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई और कटनी में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों और गैर गर्भवती महिलाओं को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत। SH बिहारी का लिखा इस ये गीत था और इस गीत को संगीत दिया था OP नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म फर्ज से। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फकीरा फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म गैम्बलर से। इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गोलमाल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म गोरा और काला से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म घरौंदा का ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है जयदेव कुमार ने। आवाज़ है रूना लैला की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स

0: लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतरण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी आप राजेंद्र कुमार के गाए कुछ भजन और गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए ये पर्यावरण गीत।

0: सुआ जाने काऊ देने पड़े
1: सुआ। राजेंद्र कुमार के गाए इस चेतावनी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र इला आपके साथ। तो श्रोता मित्रों, कैसे हैं आप? बदलते इस मौसम में सर्दी जुकाम की समस्याएं तो आम तौर पर लगभग सभी को हो रही हैं या हर घर में हो रही हैं। तो ऐसे में

बचाव तो रखना ही होगा। बहरहाल आज मेघनाथ साह की जयंती है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 को शौराटिल गांव, जो कि ढाका में है, वहां पर हुआ था, यानी बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साह और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गरीबी के कारण साह को हालांकि आगे बढ़ने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई। एंट्रेंस में पूर्वी बंगाल में वे प्रथम रहे। इसके बाद वे ढाका कॉलेज में पढ़े। वहीं पर वियना से डॉक्टरेट करके आए प्रोफेसर नागेंद्र नाथ सेन से उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 16 जून 1918 को उनका विवाह हुआ। 1920 में उनके 4 लेख सौरवर्ण मंडल का आयनीकरण, सूर्य में विद्यमान तत्वों पर गैसों की रूप विकिरण समस्याओं पर और तारों के हार्वर्ड वर्गीकरण पर फिलासफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुए। इन लेखों से पूरी दुनिया का ध्यान साह की ओर गया। सन 1923 से सन 1938 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। इसके उपरांत वे जीवन पर्यंत कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के प्राध्यापक और डीन रहे। सन 1927 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। सन 1934 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वे अध्यक्ष रहे। साह इस दृष्टि से भी बहुत भाग्यशाली थे कि उनको प्रतिभाशाली अध्यापक और सहपाठी मिले। उनके विद्यार्थी जीवन के समय जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय अपनी प्रसिद्धि पर चरम पर थे। सत्येंद्र नाथ बोस, ज्ञान घोष और जे एन मुखर्जी उनके सहपाठी थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ अमीय चंद्र बनर्जी उनके बहुत नज़दीकी थे। उनका देहांत 62 वर्ष की उम्र में, यानी 16 फरवरी 1956 को हुआ। हालांकि उन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना योगदान दिया। अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1905 में बंगाल के आंदोलन को तोड़ने के लिए जब इस राज्य पर राज्य का विभाजन कर दिया, तो समूचे क्षेत्र में भी ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। उस समय पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर फुल्लर थे। अशांति के इस दौर में जब फुल्लर मेघनाथ के ढाका स्कूल में मुआवने के लिए गए, तो मेघनाथ ने अपने साथियों के साथ फुल्लर का बहिष्कार किया। नतीजन मेघनाथ को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए मेघनाथ क्रांतिकारियों के भी संपर्क में आए। उस समय आज़ादी के दीवाने नौजवानों के लिए अनुशीलन समिति से जुड़ना देश सेवा का पहला पाठ माना जाता था। मेघनाथ भी इस समिति से जुड़े और बाद में सुभाष चंद्र बोस के भी संपर्क में आए और राजेंद्र प्रसाद से भी, जो कि अपने उस समय पर राष्ट्रपति थे, उनसे भी वे संपर्क में आए। बहरहाल इस महान वैज्ञानिक को हमारा शत शत नमन।

0: मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET के लिए आवेदन की अंतिम तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन शुल्क 12 अक्टूबर तक जमा किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हुई थी। करीब 1.5 लाख पात्र शिक्षकों में से अब तक लगभग 22,000 ने ही फॉर्म भरा है। इसमें करीब 4,000 सरकारी शिक्षक भी हैं। और अब एक अगली खबर खास तौर पर आपके लिए। इस बार चिकित्सा का नोबेल प्राइज अमेरिका और जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इन्होंने दिमाग में अलग अलग नर्व सेल्स की एक्टिविटी को ऑन या ऑफ करने की तकनीक पर रिसर्च की है। ये वैज्ञानिक है कॉल डेस्टराथ, पीटर हैगेमान और जॉर्ज नेगल। इनका काम लाइट गेटेड आयन चैनल्स और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। आंखों की रेटिना कोशिकाओं को प्रकाश संवेदनशील बनाकर उन लोगों की रोशनी लौटाई जा सकेगी जो किसी बीमारी की वजह से दृष्टिहीन हो गए हैं। दिमाग के विशिष्ट न्यूरॉन्स को ऑन ऑफ करके शरीर के कंपन और लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि मानसिक विकारों के दौरान दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, और इससे इलाज में भी मदद मिलेगी। है ना अच्छी खबर।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक और अच्छी खबर। असम के जॉगी रोड मोरीगांव में बन रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट होगा। पूरी तरह से चालू होने पर इस प्लांट की उत्पादन क्षमता रोजाना करीब 4.8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स तक होने की उम्मीद है। करीब 592 एकड़ में फैले हुए इस प्लांट में ट्रायल रन चालू हो चुका है। यहाँ वायर बॉन्डिंग, फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम पैकेजिंग सहित एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। यहाँ बन रही चिप से ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिक वाहन, टेलीकम्युनिकेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। ये प्लांट 27,000 से 40,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी देने की क्षमता रखता है। असम में तैयार हो रहे सेमीकंडक्टर प्लांट से दूसरे देशों में काम कर रहे लोग खासी उत्साहित हैं। कई हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो कि विदेशों में नौकरी कर रहे थे, वे भी अब इस ओर ध्यान देने लगे हैं। तो है ना एक अच्छी खबर। और एक और अच्छी खबर पर, मध्य प्रदेश में आम लोगों को जिनको कि सफ़र करने का शौक है, जो कि धार्मिक पर्यटन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक खबर है। या फिर आपातकालीन इलाज के लिए हवाई नेटवर्क का नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, यानी हवाई सफ़र करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति 2025 के अंतर्गत हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर हवाई पट्टी और 45 किलोमीटर पर हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में 8 एयरपोर्ट, 20 से ज़्यादा एयर स्ट्रिप्स और 220 हेलीपैड हैं। वर्ष 2023-24 तक इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में 5 एयरपोर्ट थे। इसके बाद रीवा, दतिया और सतना से जुड़ने से संख्या अब 8 हो गई है। उज्जैन और शिवपुरी में काम पूरा होने के बाद प्रदेश में 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही करीब सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारक को गंभीर बीमारी या सड़क हादसे में प्रदेश के भीतर या बाहर अस्पताल तक फ्री भेजने की इसमें सुविधा होगी। प्रदेश के भीतर ले जाने के लिए कलेक्टर, जबकि प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालक की अनुमति की जरूरत होगी। प्रदेश के भीतर सुविधा मुफ्त है उन लोगों के लिए जो कि गैर आयुष्मान धारक कार्ड के हैं, मरीज हैं। प्रदेश से बाहर ले जाने पर सरकार की तय दर के अनुसार उन्हें शुल्क देना होगा, है ना एक अच्छी खबर। बहरहाल अब क्यों ना गुनगुना लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रिला आपके साथ। श्रोता मित्रों, विज्ञान की पढ़ाई किताबों के पन्नों तक सीमित ना रहे, विद्यार्थी अपने आसपास की प्रकृति को देखें, सवाल पूछें, कारण तलाशें और प्रयोग के जरिए समाधान तक पहुँचें। भोपाल की शिक्षिका डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने शिक्षण की ऐसी ही कुछ शैली विकसित की है। महात्मा गांधी संदीपनी विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिका डॉक्टर शुक्ला पेड़ पौधों, पक्षियों, पर्यावरण और स्थानीय जैव विविधता की पढ़ाई से जोड़कर ही उन्हें समझाती हैं। उनकी कक्षा में कोई सवाल या आसपास की समस्या विद्यार्थियों के सामने रखी जाती है, जिसके बाद वे खुद ही विचार करते हैं और परिणाम तक पहुंचकर समाधान का मॉडल तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में विज्ञान उनके लिए परीक्षा का विषय न होकर रोजमर्रा के जीवन को समझने का माध्यम बन जाती है। गौरैया संरक्षण का उनका प्रयोग इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2021 में जैव विविधता का पाठ पढ़ाते समय उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि किस प्राणी को संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है। विद्यार्थियों ने गौरैया का नाम लिया। इसके बाद सवाल उठा कि गौरैया के सामने संकट क्या है और उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने शोध किया, जिसमें ये पाया कि प्राकृतिक आवास की कमी सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद स्कूल और घरों में लगाए जा सकने वाले घोंसले तैयार करने का प्रयोग शुरू हुआ। अलग अलग सामग्री और डिजाइन अजमाने के बाद विद्यार्थियों ने लकड़ी का स्पैरो हाउस मॉडल तैयार किया। आगे चलकर इस परियोजना को वित्तीय सहयोग मिला और भोपाल के भेल क्षेत्र में करीब 200 स्पैरो हाउस लगाए गए। परियोजना का प्रस्तुतिकरण कंजर्वेशन एशिया कांग्रेस 2026 में भी हुआ और बाद में इसे 7वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक में भी स्थान मिला। गौरैया के इस प्रयोग की खासियत ये है कि विद्यार्थियों ने संरक्षण को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको करके भी देखा। इसी तरह पेड़ों की QR कोडिंग के जरिए विद्यार्थियों को पेड़ों की पहचान, उनकी विशेषताएं और उपयोग भी समझाए जाते हैं। सेव अ सीड, सेव अ ट्री के माध्यम से बीजों के संरक्षण और पौध तैयार करने की प्रक्रिया भी समझाई जाती है। बर्ड और बटरफ्लाई के बारे में भी विद्यार्थियों को अपने आसपास देखने और पहचानने का भी तरीका बताया जाता है। और अब अगली खबर उनके लिए जो कि विधि यानी कानून से जुड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं। शहर में एकमात्र शासकीय विधि महाविद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र में अपना नया भवन मिल जाएगा। महाराजपुरा क्षेत्र में तैयार हो रहे 2 मंजिला भवन में अलग सत्र की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है। अभी लॉ कॉलेज शासकीय लक्ष्मीबाई कला और वाणिज्य महाविद्यालय के परिसर में चल रहा था। नए भवन में पढ़ाई के साथ कानून के विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी और मूट कोर्ट रूम जैसी सुविधाएं भी एक ही परिसर में मिलेंगी। 2 मंजिला भवन में 28 क्लासरूम होंगे। इसके साथ स्टाफ रूम, प्राचार्य कक्ष और टॉयलेट ब्लॉक की भी व्यवस्था होगी। परिसर में विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान और हॉल भी रहेगा। इसके साथ ही कॉलेज के नियमित शैक्षणिक काम के साथ विद्यार्थियों की दूसरी गतिविधियों के लिए भी अलग अलग जगह उपलब्ध होंगी। नए भवन की खास बात ये होगी कि यहाँ पर मूट कोर्ट रूम शामिल होगा। कानून की पढ़ाई में अदालत की कार्यप्रणाली को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों को कानूनी विषयों के साथ कोर्ट की कार्यवाही, बहस और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े अभ्यास का अवसर इसी सुविधा के माध्यम से मिल पाएगा। ये सुविधा खासतौर पर कानून की व्यवहारिक पढ़ाई में उपयोगी होगी। लाइब्रेरी भी नए परिसर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। कानून के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबों और अध्ययन सामग्री के लिए कॉलेज परिसर में ही पढ़ने की जगह भी मिलेगी। इससे कक्षा के बाद अध्ययन और संदर्भ सामग्री देखने के लिए विद्यार्थियों को के पास में एक खास स्थान होगा। है ना एक अच्छी खबर। तो
अब घड़ी का इशारा है कार्यक्रम यहीं खत्म करने का, तो अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए अजीत सिंह पैंटल का गायन, राग है विलास खानी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अजीत सिंह पेंटल का गायन राग था विलास खानी तोड़ी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब इस समय प्रातः की 10 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छतरपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक जिले में 10,000 से ज्यादा आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जा चुका है। राजनगर, खजुराहो, महाराजपुर, बिजावर और नौगांव सहित कई क्षेत्रों में लगे शिविरों में कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास बात यह है कि इस शिविर से पहले स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी अभियान के तहत लगाए गए आयुष स्वास्थ्य शिविरों से भी ग्रामीणों को फायदा हो रहा है। अब तक 805 लोगों ने आयुष चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। वहीं दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के उपकरण निःशुल्क बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में बीते दिनों 1,11,000 दीप जलाकर मंदिरों और केन बेतवा परियोजना की आकृति उकेरी गई थी। अब बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की। सागर संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार ने पाठापुर गांव पहुंचकर बीते दिनों कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ ग्रामीणों के साथ संवाद किया। मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी शंकाओं का मौके पर ही समाधान कराया गया और कलेक्टर ने इस बात का भरोसा दिलाया कि पात्र प्रभावित परिवारों को 100% मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक बैंक खाते फेल होने जैसे मामलों में भी करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से नई बसाहटों में जल्द शिफ्ट होने की अपील की है ताकि वहां सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं पूरी तरह व्यवस्थित की जा सके। वहीं दूसरी तरफ छतरपुर शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। नगरपालिका की टीम घर घर जाकर कचरा संग्रहण के रूट का सर्वे कर रही है ताकि कचरा उठाने की व्यवस्था ज्यादा प्रभावी हो। वार्डों में गीले कचरे से खाद बनाने और गीला सूखा कचरा अलग रखने की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। स्वच्छता के साथ शहर को हरा भरा बनाने पर भी जोर

0: है। ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में अमृत हरित अभियान के तहत बीते दिनों 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने उनकी देखभाल का संकल्प लिया। अब किसानों के लिए एक जरूरी खबर। खरीफ 2026 सीजन में सोयाबीन के भावांतर योजना के तहत छतरपुर जिले में 15 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक अपनी सोयाबीन फसल का पंजीयन करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है ताकि योजना का लाभ लिया जा सके। छतरपुर विधानसभा के ग्रामीण परिवारों के लिए भी अच्छी खबर है। तरपेड़ समूह जल प्रदाय योजना के तहत 104 गांवों में घर घर नल से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। विधायक ललिता यादव ने बीते दिनों जल शोधन संयंत्र और पानी की टंकी का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम तेज करने और अगले 2 महीने में पेयजल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान का मकसद गांवों में साफ सफाई के साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। छतरपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बीते दिनों आयोजित किया गया। जिले की 6 विधानसभा सीटों से 30 मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों, नवविवाहित महिलाओं और 18 से 19 वर्ष तक के नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया समझाई गई। वहीं जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ रहे हैं। छतरपुर जिले में गंभीर मरीजों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ भी लगातार मिल रहा है। अब तक जिले में 16 मरीज इस सुविधा के जरिए उपचार करा चुके हैं। हाल ही में प्रसव के बाद गंभीर हुई ईशानगर की 30 वर्षीय महिला को खजुराहो से एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल भेजा गया। जिले में श्रवण एवं वाक बाधित लोगों के लिए अनुगूंज से उद्घोष विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस शिविर में प्रतिभागियों को विधिक अधिकार, सरकारी योजनाओं और उन्हें मिलने वाली सहायता की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मध्यस्थता, तनाव प्रबंधन, योग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास भी किया गया। अंत में बात करते हैं रोजगार की। छतरपुर जिले में सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और हाउसकीपिंग के पदों पर भर्ती के लिए पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। जनपद पंचायत बिजावर में आज, नौगांव में 7, बड़ा महलहरा में 8, राजनगर में 9 और छतरपुर में 10 अक्टूबर को इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगेंगे, जहाँ चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद स्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा। छतरपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुप्त फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव और उनके परिवार के सभी सदस्य, कनेरा मोहल्ला पटियाला।

से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत और भगत परिवार के सभी सदस्य, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारा बेटा चटकू मटकू, महावीर, गीता, सुखनयन सिंह बूटा, धर्मवीर सिंह बूक और अर्जुन सिंह, सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार और सुनीता मालाकार, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना, कालेगांव तालुका जफराबाद से सुधाकर जाधव, प्रशांत जाधव, जगुताई जाधव, चिरंजीव संचित, वर्षाताई, स्वातिताई देशमुख, पूजाताई देशमुख, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और उनके परिवार के सभी सदस्य, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी, सलोनी अंसारी और हिना परवीन अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, जेल रोड बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और यामिनी अंसारी, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, पुराना तालाब डुमराव से याकूब आसमाडोम, यूसुफ आसमाडोम, इमरान आसमाडोम, इमरान इरफान आसमाडोम, कलीमा आसमाडोम और अलीम आसमाडोम, कोटा राजस्थान से श्रीमती सोनम रजावत, श्रीमती आसमा रजावत, श्रीमती रेशमा रजावत और श्रीमती आदिबा रजावत, ऊपरकोट बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जवली अंसारी, फरूखवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी, आसमा नाज डोम, वलीउल्लाह डोम और डब्लू वली डोम, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से उपेंद्र खुराना, दीपेंद्र और नरेंद्र खुराना, छठिया पोखर डुमराव से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद वली और स्टार मोहम्मद समी, जेल रोड रायगढ़ से अनिल त्रिपाठी, रोहित यामिनी और सुनील त्रिपाठी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

चिन्मयी और एआर रहमान की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म गुरु का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता मित्रों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरवरा शेख, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, आकृति राहुल, ज्योति राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर, नमन और गुरकीरत सिमरत और ब्रजेंद्र कुमार जयचान, रेडियो के दीवानी ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शबनम अंसारी, रिहाना अंसारी और शकीला अंसारी, डुमराव बिहार से आसमा परवीन और वली भाई अंसारी, मुस्तफाबाद दिल्ली से डॉक्टर अदीबा और उनके परिवार के सभी सदस्य, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से श्रीमती रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल, भारती बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनके साथी, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, पटियाली रोड गंजडुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, बेबी फौजिया, अलीहा हुसैन और अरहान हुसैन।

अजीत सिंह की आवाज़ में लीजिए सुनिए हैदर फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है ग्वालियर हजीरा से महेंद्र सिंह परिहार, मदन सिंह, बल्लू, ओम प्रकाश, पातिराम, रतिराम, महेंद्र सिंह परिहार, लल्ला प्रसाद, मनीराम, महेश परिहार, नरेश परिहार, सुल्तान सिंह, प्रदीप परिहार, संजय, सचिन, सुनीता परिहार, कुंती, मौनी, ज्योति, रेखा, मीना, सविता, विनीता, सरिता, कुसुम, नारायण, नीलम, लता और राजेंद्र सिंह परिहार। ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: गुजारिश फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए सुनिधि चौहान और साहिल हाडा की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे श्रोता मित्रों ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद शाहिद नूरजहां और परवीन नूरजहां, जिला परभणी पोस्ट देगांव से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, ज्ञानेश्वर थोरात, अनीता थोरात, गजानन थोरात, बंटी थोरात, श्रेया थोरात और रंजीत थोरात, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर।

ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह और नीलू कमल, नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा, ऊपरकोट बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डी एच बच्चन, एम फारूक शेख, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम।

पलक मुछाल और अमित मिश्रा की आवाज़ों में लीजिए सुनिए तिश्नगी फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने। ज़िला बेगूसराय बिहार से दिनेश कुमार राय, स्वाति देवी, अंश कुमार और राहुल कुमार। शेरी बड़नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर और नामिका दामोदर। दरियापुर बभाली से गजानन येले और नवदीप येले।

ज़ेल रोड रायगढ़ से यामिनी अली और उमाली, बक्सर बिहार से राज अंसारी, शिल्पा राज और नीतिका राज, ज़ेल रोड दानापुर से तुलसी दास दुबे और दया दुबे, नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और मोहिनी ऋतिक, निमा श्रोता परिवार शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी और दीपिका सैनी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पंचाल, पांडुरंग सावले, दत्तराव कराले और रेशमा जी सोनटके, कासम कॉलोनी सनावत से यूसुफ खत्री, शफी खत्री, इदरिश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, गंजडंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही, पुनावली पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी, शायसा सोनवनी, कुंभरगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहित दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और सानिका दले।

ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा और धनेश्री वर्मा। सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी वर्मा और कृत वर्मा। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रमिला श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। ग्राम सनौतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनप्रीत कौर और रौनक दीप कौर। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहती हैं फिल्म तेरे नाल लव हो गया का ये गीत। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म तेरे नाम का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को सुना चाहा है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज राजावत, मधु राजावत, ऋषि रक्षित, चित्तरंजन, कमल, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्य। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली, बाल के अली, शबीना बानो और उनके परिवार के सभी सदस्य।

इसके साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 240 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान करेंगे। वहीं 60 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 3 मेधावी विद्यार्थियों को शंकर दयाल शर्मा पदक प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखेंगे। श्री सिंह ओडिशा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट इकाई द्वारा निर्मित 2000वें एरो इंजन को राष्ट्र को सौंपेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और भारत में साझेदारी तथा निवेश को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। श्री गोयल ने कहा कि भारत में वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अवसर और दीर्घकालिक मूल्य सृजन की संभावनाएं हैं। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मैहर गौरव दिवस पर कल मैहर शहर के फुटबॉल ग्राउंड में 3,430 छात्र छात्राओं ने एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने लगातार 9 मिनट 34 सेकंड तक एक लय और अनुशासन के साथ कथक की विभिन्न मुद्राएं प्रस्तुत कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। और फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। यह मुकाबला साल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: बचपन, वो समय जब खेलने के लिए हमें किसी महंगे खिलौने या मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती थी। गली, आंगन, मैदान या स्कूल के किसी भी कोने में हम शुरू हो जाते थे। कभी कंचे, कभी गिल्ली डंडा, कभी लुका छुपी या पकड़म पकड़ाई। हर खेल के साथ हमारे दोस्तों की ढेर सारी यादें जुड़ी होती थी। आज बच्चों के खेलने के तरीके काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन हमारे बचपन के हमारे खेलों की बात अलग ही थी। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बचपन के खेलों के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से लेकर 11 तक। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद, मैं ग्राम तरसुमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
2: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
3: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
2: हरविलास जी, आज कार्यक्रम का विषय है बचपन के खेल, तो बताएं आप कौन से खेल खेला करते थे बचपन में?
3: जी, मैं बचपन में खेलता था, कबड्डी खेलता था, एक कुल्लू कुल्लू कहते छिपी आते थे अन्य लोग ढूंढते थे वो खेलता था।
2: अच्छा।
3: और मेरे गांव के पास नदियों से मैं तैरने भी जाता था, बड़े बड़े लोग सिखाते थे, मैं उस समय तैरता भी था।
2: अच्छा।
3: इस तरह के खेल खेलते थे और बड़ा ही मजा आता था इन खेलों में।
2: आपने कोई नाम लिया कुल्लू कुल्लू।
3: कुल्लू कुल्लू
2: ये कुछ नया लग रहा है,
3: लुका छुपी बोलते हैं जैसे।
2: अच्छा, लुका छुपी। तो कैसा लगता था, बड़ा मजा आता था? अभी आप नए बच्चों को देखते हैं, उनके अलग खेल हैं, कभी फोन है, कभी वीडियो गेम्स हैं, तो कैसा लगता है आपको?
3: बस यादें बकाया रह गई है, लगता तो अच्छा था लेकिन अब वो खेल तो यादें बंद कर रहेगा ये।
2: हाँ जी,
3: पेड़ पे चढ़कर छलांग लगाते थे, उसे उरग डड़ा बोलते थे, उसको कई लड़के दौड़ा देते थे, अपना अपना दाव देते थे, इस तरह खेल खेलते थे।
2: अरे वाह, आपके घर में अभी कोई बच्चे हैं जो इनमें से कोई खेल खेलते हैं?
3: बिल्कुल है, मेरी नाती हैं, वो खेलते हैं अभी इन खेलों को। पुराने खेलों को तो नहीं खेलते, नए नए खेलों को खेलते हैं।
2: हाँ, जैसे?
3: और नदी में जरूर हम बरकरार रखे परंपरा, उन्हें तैराकी सिखाते हैं ले जाके, जब छुट्टियों में घर आते हैं तो उन्हें तैराकी सिखाते हैं, बस इतना करते रहते हैं।
2: आपने अपने घर में अपने बच्चों को सिखाया है अपनी पुरानी परंपरा?

0: कलाएं जीवित रखी हैं आप खेलों के जरिए या तैराकी के जरिए, है ना?
1: जी
0: बहुत बहुत बढ़िया हरिविलास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए.

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार मैम, मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। मैम
0: विपिन कटारे जी, सागर से, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आप रक्षा की बात कर रही हैं ना?
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, बातचीत कर रहे हैं हम बचपन के खेलों के बारे में। बताइए कौन से खेल आप खेलते थे?
1: बचपन में तो सभी खेल खेले हैं, बहुत सारे खेल खेले हैं, और अभी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा खेल कौन सा है जो मैंने खेला है। तो बहुत सारे खेल मुझे याद आ रहे हैं,
0: बताएं।
1: जैसे नॉर्मली है जो सभी लोग खेलते थे, लुका छिपी है,
0: जी
1: कबड्डी है, ये खेल तो हमने बहुत खेले हैं बचपन में,
0: जी
1: और बहुत सारी शरारतें भी की हुई हैं। और ऐसे बहुत सारे खेल और भी हैं जो मतलब खेलते हैं, जिनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ बचपन में बहुत खेल खेले मैंने। और जिसे मुझे याद आ रहा है इस मौसम से कि बरसात का जब मौसम होता था तो
0: जी
1: जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है बरसात में,
0: जी
1: तो बहुत सारे खेल खिलौने बाजार में मिलते थे इस टाइम पर,
0: अच्छा,
1: तो वो भी बहुत खेले हैं हमने।
0: तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा था? मतलब आपको नाम नहीं भी याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप हमें बता सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे खेलते थे, इस तरह से हम खेला करते थे।
1: वैसे मुझे पता है सबसे ज्यादा शौक एक खेल का था, जो मिट्टी के खिलौने बनाने होते ना, वो बनाता था मैं, और वो नहीं को ज्यादा खेलता था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत मजा आता था कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई सड़क पे ट्रक देखा या ट्रैक्टर देखा, तो मुझे उसी हिसाब मतलब उसी डिजाइन का बनाना है। तो ऐसे में मिट्टी के खेल मतलब खिलौने मैंने बहुत खेले हैं।
0: अच्छा
1: और फिर इसके अलावा एक और खेल हम खेलते थे कि पेड़ पे, एक हमारे यहाँ खेल होता था कि जो हम पेड़ों पे खेलते थे, जैसे हम 10-15 साल की उम्र हो जाती थी तो पेड़ों पे चढ़ना तो आसान था, और हम जैसे गांव में हैं तो यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे,
0: जी
1: तो ऐसे एक होता था कि बॉल फेंक के हमें पेड़ पे चलना है, और वो बॉल उठानी होती थी जमीन पे आके, और उसको फिर से मतलब वो हमें पकड़ ना पाए और हम दोबारा से पेड़ पे चढ़ जाएं।
0: अच्छा, कुछ कुछ
1: हाँ
0: ऐसे तौलिया जैसा मिलता जुलता है।
1: हाँ हाँ हाँ जी।
0: हाँ
1: तो वो उस खेल में बड़ा मजा आता था कि, और हमारे यहाँ क्या था कि पेड़ देखते तो पेड़ों से लग के पेड़ लगातार हुए थे, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तो ऐसे
0: अरे वाह,
1: बड़ा मजा आता था वो उस खेल में। और
0: अरे
1: फिर
0: वाह,
1: नीचे उतरना है, फिर उसको पकड़ के फेंकना है, और फिर दोबारा से जल्दी चढ़ना है, हालांकि उसमें रिस्क रहता था, लेकिन हम लोग
0: जी
1: ऐसे गिरे तो कभी नहीं है इतना अधिक की
0: जी
1: मतलब ज्यादा कोई चोट वगैरह आ जाए, पर इस खेल में मुझे
0: हाँ
1: काफी ज्यादा मजा आता था। और ये खेल हम लोगों ने बहुत खेला, विशेष तौर पे गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में पेड़ों की जगह पे अच्छा भी लगता था और सुकून भी मिलता था। और गर्मियों में एक चीज और भी होती थी
0: जी
1: कि छुट्टियां रहती थी, और इसके अलावा घर के जो फैमिली के लोग रहते थे वो दोपहर में सो जाते हैं सभी लोग
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: कूलर पंखे चला के, तो
0: जी
1: हम लोगों को मौका भी मिल जाता था ऐसा खेल खेलने के लिए, रोक टोक नहीं हो पाती थी।
0: जी बहुत बढ़िया। तो विपिन जी, अभी क्या करते हैं आप वर्तमान में?
1: अभी तो हम खेती किसानी ही करते हैं, और फिलहाल में तो और जो घर के काम काज है वही संभालते हैं मैम
0: अच्छा जी, बहुत
1: जी। और
0: अच्छा।
1: वैसे अभी भी बचपन ही समझ लीजिए, उम्र ज्यादा भी नहीं है, 26 साल का ही हूँ मैं
0: तो फिर उस
1: अभी
0: हिसाब
1: भी
0: से अभी
1: थोड़ा
0: तो
1: बहुत
0: कोई
1: बचपन।
0: इनमें से अभी भी खेल खेल रहे हैं आप जब
1: अभी
0: बचपन ही है?
1: तो उतना तो नहीं खेलते, लेकिन हाँ अभी हम लोग एक खेल खेलते हैं जो कि शायद बताना भी अच्छा है, मतलब बता भी सकते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ नदी निकली है, और नदी में हम लोग जब नहाने जाते हैं ना तो कुछ 5-6 लोग या 7 लोग हो जाते हैं, तो नदी में हम लोग जो होता ना छूने वाला के खेल के, मतलब वो कितना जल्द फास्ट तैर सकता है, और हमें छू के बताओ।
0: अच्छा, पकड़म पकड़ाई लेकिन नदी में।
1: हाँ नदी के अंदर,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: ये खेल हम लोग अभी भी खेलते हैं जब नदी में नहाने जाते हैं तो।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
1: और
0: विपिन
1: एक और
0: जी।
1: होता है कि
0: जी
1: पानी के अंदर, यहाँ से हम अंदर हुए तो कितने दूर तक हम पानी के अंदर ही अंदर तैर सकते हैं, तो ये भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कहा जाए कि एक कंपटीशन होता है
0: कंपटीशन की तरह,
1: जी।
0: बढ़िया,
1: तो ये खेल अभी हम लोग खेलते हैं
0: बहुत
1: तो एक
0: अच्छा।
1: भी अच्छा लगता है, 1-2 घंटे बीत जाते हैं उसमें भी
0: अरे वाह, बहुत अच्छा विपिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी यादें आपने साझा की हमारे साथ कार्यक्रम में
1: जी।
0: फ़ोन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: क्या करते हैं योगेश जी?
1: खेती बाड़ी,
0: अच्छा, और कैसा है अभी मौसम वगैरह, कैसा है वहाँ पर?
1: मौसम तो बहुत धूप है,
0: हाँ
1: ठंड भी लगता है, थोड़ा सा लेट से आएगा।
0: हाँ थोड़ा देरी से आएगी ऐसा लग रहा है। अच्छा, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और कार्यक्रम में हमेशा एक विषय होता है जिस पर हम बात
1: जी
0: करते हैं। तो आज का
1: जी
0: विषय है बचपन के खेल। कौन से खेल आप खेला करते थे आपके बचपन में?
1: बचपन में तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं,
0: जी
1: पिट्टूल है, कबड्डी है, खो खो है, भौंरा है, बाटी है, और लुका छिपी, ये सारी चीजें होती थी। अब तो थोड़ा सा काफी बदलाव आ गया है, तो
0: हाँ, तो इसमें कुछ नाम
1: जी
0: मुझे पहचाने हुए लगे, कुछ नाम मुझे नए लगे, जैसे भोरा भोरा आपने कहा, कुछ
1: हाँ
0: बाती आपने कहा, ये
1: हाँ
0: बताएं इनके बारे में बताइए।
1: भौरा जो होता है वो एक लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, नीचे एक छोटा सा कील लगा होता है,
0: अच्छा, लट्टू,
1: और हाँ हाँ बस बस बस बस
0: लट्टू,
1: बस,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो रस्सी के सहारे उसको चलाते हैं,
0: चलाते हैं।
1: और छोटे छोटे जो मिट्टी के होते थे वो, तो उसके भी भौरा बनाते थे, और
0: जी,
1: एक जो और क्या पूछे,
0: दूसरा एक और नाम शायद आपने कुछ बाती जैसा बताया था,
1: बाटी, बाटी बोला,
0: बाटी। अच्छा हाँ, वो
1: बाटी
0: बताएं।
1: जो छोटा छोटा कंचा होता है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो
1: जी हाँ
0: खेल
1: जी
0: समान है, नाम अलग
1: हाँ
0: अलग जगह जाके
1: जी
0: अलग
1: जी
0: अलग बदल से जाते हैं।
1: जी
0: जी, तो इनमें से सबसे पसंदीदा खेल आपका कौन सा होता था?
1: पसंदीदा खेल का तो नाम ही नहीं लिए, क्रिकेट सबसे ज्यादा खेले हैं
0: अभी भी खेलते
1: जी।
0: हैं?
1: अभी अब थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह नहीं मिल पाता ना, तो थोड़ा सा वो कम हो गया, बहुत कम हो गया है, उसको
0: अच्छा
1: बचाना खेलना होता है
0: हाँ,
1: जी।
0: तो आपके आसपास जो घर में नए बच्चे हैं, वो इनमें से किसी खेल को आपने देखा है वो खेलते हो?
1: हाँ जी, ये जो पिट्ठूल वगैरह है, बाटी भौंरा, ये तो आज भी चल रहा है, क्योंकि जगह अच्छे हो गए हैं, कंक्रीट वगैरह भी हो गया है, तो
0: जी,
1: उसमें तो आज भी खेलते हैं
0: बहुत अच्छा लगा योगेश जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत
1: जी।
0: धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी नमस्कार, मैं राम नरेश बोल रहा हूँ, तकारी खेड़ी जिला राजगढ़ से। जी
1: राम नरेश जी, राजगढ़ से कैसे
0: जी
1: हैं आप?
0: हम ठीक हैं।
1: क्या करते हैं राम नरेश जी?
0: हम कृषक हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: अच्छा, क्या लगाया हुआ है अभी?
0: अभी तो सोयाबीन था इसमें, और खरीफ सीजन में वो तो कट गया है,
1: अच्छा
0: अब रबी सीजन आया है तो उसमें गेहूं, चना, सरसों, मसूर, इस तरह के लगाए जाएंगे।
1: अच्छा अभी आप लगाएंगे, ठीक है। राम नरेश जी, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और कार्यक्रम में हम हमेशा एक विषय रखते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। आज का विषय है बचपन के खेल, जो खेल हम बचपन में बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मज़े लेते थे, और उनकी यादें भी हमारे साथ रह जाती हैं। तो ऐसे बचपन के खेलों के बारे में आप बताएं जिस जो आपके जीवन में रहे हैं।
0: बचपन के जो खेल होते थे, जैसे हम तो खैर पढ़ाई करने जाया करते थे, लेकिन जो समय मिलता था
1: जी

0: जो गर्मियों की छुट्टी होती थी तो जो अपने मित्र हुआ करते थे
1: जी,
0: उनके साथ में जंगलों में घूमना, जो
1: अच्छा।
0: मतलब बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, मवेशी चराते थे,
1: अच्छा,
0: उनके साथ जाना, और बारिश के मौसम में जब तालाब और कुएं भर जाते थे पानी से
1: जी,
0: उनके साथ स्विमिंग करना, तैरना कुएं में,
1: अरे वाह,
0: और कुएं के अंदर ही एक गेम खेलते थे छिल्लक छाई का।
1: अच्छा, क्या होता है इसमें?
0: बड़ा कुआ होता था जिसमें सभी लोग पानी के अंदर चले जाते थे, हम बाहर रहते थे
1: जी,
0: पानी में ही
1: जी,
0: और कहते थे कि अब हम अंदर जा रहे हैं, तुम हम में से किसी एक को टच करना पानी
1: अच्छा,
0: के अंदर,
1: अच्छा,
0: जो टच कर दिया तो फिर वो अगला गेम उसकी बारी होगी, फिर हम दूसरे लोगों को छोड़ने की।
1: तो पकड़म पकड़ाई लेकिन कुएं के
0: हाँ,
1: अंदर आप करते थे?
0: कुएं में, पानी में अंदर।
1: अरे वाह,
0: तो इस तरह के गेम खेला करते थे हम। और उसमें क्या था कि जो हमारे घर के जो बड़े थे
1: जी,
0: मामा जी जो हमारे थे, उन्होंने हमें पानी में तैरना, स्विमिंग करना सिखा दिया था।
1: हाँ,
0: क्योंकि पानी में हमें तैरना अवश्य आना चाहिए,
1: आना
0: क्योंकि
1: चाहिए।
0: कभी मान लीजिए ऐसी परिस्थिति फंस गई
1: जी,
0: और हमें उस पानी से बाहर निकलना है,
1: जी,
0: या फिर बहते जल से हमें कैसे बचना है,
1: हाँ जी,
0: उस चीज से सक्षम होना।
1: जी जी
0: तो वो तो डर तो था नहीं हमें कि हम कुएं में छिल्लक छाई या पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हम 10 हाथ 20 हाथ 22 हाथ नीचे से जाकर ऊपर भी आ सकते थे, मतलब कोई पानी के अंदर रहते थे कोई ऐसा डर नहीं था कि हम डूब जाएंगे।
1: जी
0: हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल जैसी बात थी हमारे लिए।
1: तैराकी आपकी बहुत अच्छी थी बेसिकली?
0: हाँ, तैराकी बहुत अच्छी थी, और हमारे जो मित्रगण हुआ करते थे वो भी काफी अच्छा तैरते थे।
1: हाँ,
0: तो कई बार जैसे हमारा कोई नया मित्र है उसको कहते चलिए आप भी खेलें, तो वो कहते कि हमें तैरना नहीं आता।
1: जी,
0: तो सब मित्रगण क्या करते थे, उसको पकड़कर पानी में डालते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो हालांकि हम तो पूरी तरह से सक्षम थे, हम उसको बचा सकते थे, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि ये सीखे, सक्षम हो,
1: अच्छा,
0: और जब ये सीख जाएगा तो हमारे साथ वो गेम खेल सकता है।
1: अच्छा
0: जी जी जी तो हम सिखाते भी थे, तो ये हमारे बचपन के खेल है।
1: जी जी जी बहुत बहुत बढ़िया लगा रामनिधि जी, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी की थमारी
1: जी। नमस्ते, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है प्रेम सिंह जी?
1: अभी फसलों की कटाई चल रही है सोयाबीन की, कुछ सोयाबीन निकाल भी ली है कुछ किसानों ने, और कुछ अभी चल रहा है काम।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और कार्यक्रम में आज का विषय है बचपन के खेल। तो बताएं, कौन से खेल आप अपने बचपन में खेलते थे? कौन सा पसंदीदा खेल आपका हुआ करता था?
1: जी, काफी अच्छे अच्छे खेल खेले थे हम, उसमें से गिली डंडा हुआ और कंचे हुए, और चोर सिपाही का जो खेल होता था ना,
0: जी
1: वो चिट्ठियों द्वारा खेला जाता था, वो तो
0: जी
1: हम आज भी कभी कभार खेल लेते
0: अरे
1: हैं।
0: वाह।
1: उसमें चोर होता था, राजा होता था, सिपाही,
0: हाँ
1: वजीर, ये
0: हाँ
1: होते थे ना,
0: जी
1: उनके
0: जी
1: सभी के अलग अलग नंबर होते थे,
0: नंबर
1: और
0: होते
1: सभी
0: थे।
1: को जब आखिरी में जो ज्यादा नंबर एकत्रित करते थे ना, उनको विनर बनाया जाता था, और वो सबसे गिफ्ट भी उनको मिलते थे। पहले
0: जी जी जी जी जी
1: कल भी खेला था अपने परिवार के साथ में मिलके, पूरा मतलब पूरा दिन हंसी खुशी बिताया। कल हमने हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आए थे ना,
0: जी
1: तो उनके साथ में हमने ये गेम खेला, तो उनको भी काफी अच्छा लगा।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। इसी तरह का
1: जी
0: एक 16 पर्ची भी होता था, हम खेलते थे उससे, मुझे बड़ा पसंद था।
1: हाँ जी बिल्कुल, वो भी काफी हमने खेला है पिछले
0: जी
1: मतलब बचपन में।
0: जी तो इसमें
1: और
0: से
1: आजकल तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे खेल बंद हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे भी मोबाइल पर बिजी रह जाते हैं, कुछ
0: हाँ
1: ऑनलाइन क्लासेस भी होती है या ऑनलाइन
0: हाँ
1: गेम भी खेलते हैं ना, तो
0: जी
1: कुछ लोग मोबाइल पर भी खेलते हैं कुछ। हाँ, बट हमारे यहाँ भी ऐसा है कि कुछ लोग बच्चे बाहर जाके भी खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह जो होते हैं ना,
0: हाँ जी
1: हाँ ये खेल खेलते हैं।
0: आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था इन सभी में से?
1: सबसे पसंदीदा तो मैं क्रिकेट भी खेलता था, और मुझे क्रिकेट अब भी पसंद है, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है खेलने का।
0: अच्छा जी। प्रेम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद आपका भी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ मैडम जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: कैसे हैं नारायण प्रसाद जी?
1: बहुत अच्छा है मैडम जी, और क्या है, मौसम भी बहुत अच्छा है अभी।
0: जी
1: क्या है, बारिश खत्म हो चुकी है हमारी इधर, और जो धान की फसल है बहुत ही मनमोहक लगने लगा है खेतों में और लहराने लगा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ मैडम जी, और इसी काम में लगे हुए हैं, किसान आदमी है मैडम जी।
0: जी
1: और जैसे अभी इसके बाद रबी का फसल आता है, उसमें हम लोग जैसे गेहूँ है, चना है, तिवरा है, इसका भी खेती करते हैं मैडम जी,
0: जी
1: तो उसी तैयारी में लगे हुए हैं।
0: बहुत बढ़िया। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और कार्यक्रम का आज का विषय है बचपन के खेल। बचपन में जो खेल आप खेला करते थे।

0: और बड़े मजे लेते थे, आनंद लेते थे, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं।
1: क्या है मैडम जी, बचपना तो एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं,
0: जी
1: और उस वक्त जो बचपना है उसका मनमोहक ही कुछ है, अलग ही रहता है मैडम जी। अपने दोस्तों के साथ खेलना
0: जी
1: और घूमना फिरना। अब जैसे हम लोग बचपन में कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, ये
0: जी
1: जो हमारी पुरानी खेल है मैडम जी, हम लोग के हिसाब से, अभी के हिसाब से। जी
0: जी
1: जी तो और इसमें क्या है, एक मित्रता की भावना भी बढ़ता है मैडम जी, जो खेल होता है उसमें, और
0: हाँ
1: बढ़ाए रखना भी चाहिए और मित्रता बनाना ही चाहिए, सद्भावना बनाना चाहिए। तो खेल का तो महत्व ये भी एक है मैडम जी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: सद्भावना बढ़े, मित्रता बढ़े, एक दूसरे के साथ आप अच्छे से व्यवहार करें, बिल्कुल
1: जी
0: सही।
1: जी
0: इन खेलों में से कौन सा आपका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था?
1: मेरे को खो खो अच्छा लगता था मैडम जी।
0: खो
1: क्या
0: खो,
1: है, थोड़ा दौड़ना है इधर उधर, है ना, एक
0: हाँ
1: के आगे एक पीछे, ऐसे करके, एक उठे तो एक बैठे, इस टाइप का होता है।
0: जी
1: इसमें 7 लोग होते हैं खो खो खेल
0: जी
1: में।
0: जी जी
1: जी, तो ये बहुत अच्छा लगता था मैडम जी उस जमाने में।
0: हाँ
1: जी, और कभी कभार क्या होता है, त्योहारों में कुछ ऐसे मौसम होता है जिसमें कबड्डी का प्रतियोगिता रखा जाता है,
0: अच्छा।
1: तो उसमें बच्चों को जरूर भेजते हैं प्रतियोगिता में, और जैसे अन्य और छोटा मोटा जो खेल होता है उसमें भी भाग लेने कहते हैं मैडम जी। अपने जो पुराने खेल है, अपनी संस्कृति है, उसके बारे में बिल्कुल हम तो शिक्षा देते हैं मैडम जी अपने घर
0: अरे
1: में।
0: वाह जी,
1: जी जी मैडम जी, जी
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा नारायण जी आपसे बात करके। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप हमारे
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: जी मैम जी, मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबे गांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश का।
0: नरसिंहपुर से कमलेश जी, कैसे हैं कमलेश जी?
1: बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, आपको सुन रहे हैं।
0: कमलेश जी, कार्यक्रम में आज का विषय है बचपन के खेल, तो बताइए कौन से खेल आप खेला करते थे?
1: बचपन में तो मैम जी सभी लोग जा सकते हैं और खेल खूब खेले हैं मैम जी।
0: अच्छा,
1: देखिए पेड़ पौधों से खेल भी खेला है, उनपे चढ़ जाते थे, उनपे कूदते थे, चिंचलाई खेलते थे, लुकनी डीपनी खेलते थे, गड़ा गेंद खेलते थे।
0: अच्छा, ये बड़े नए नए नाम आप बता रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: देखिए मैं नाम बोला, मैं लुकनी डीप खेलते थे, चिंचलाई खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, और वृक्षों पर चढ़ करके उनसे कूदना, उसमें चिंचलाई उनपे भी होती थी वृक्षों पे।
0: अच्छा,
1: और उसके अलावा चिंगे भी बताए, चिंगे भी खेलते थे, चींटी भी खेलते थे।
0: कमलेश जी, आपने कुछ नाम बताए, चींटी बताया, कुछ एक दो और नाम बताए जो कि थोड़े नए नाम है हमारे लिए, तो इनमें क्या होता था, किस तरह खेलते थे?
1: नया नाम मैम जी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब स्थानीय खेल है मैं समझता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: सड़क गेंद की बात करें तो एक गोल बना लेते थे चाक से।
0: अच्छा,
1: उसमें एक हाथ में लाठी लेकर खड़े हुए हैं कम से कम दो चार पांच खिलाड़ी।
0: अच्छा,
1: और गेंद होती थी
0: जी,
1: जिसको यदि गेंद लग गई,
0: हाँ,
1: एक दूरी रहती थी उसे मारने की, जिस खिलाड़ी को गेंद लग गई तो वो दोबारा गेंद मारने के लिए उस गोले से बाहर हो जाता था और वो गेंद मारता था दूसरे को। लेकिन उस जो छड़ी हमारे हाथ में रहती थी लकड़ी
0: जी,
1: उस लकड़ी से हमें छेड़ना कि हमें गेंद ना लगने पाए।
0: अच्छा,
1: तो दूर जा, जितनी दूर वो जाएगा उतनी दूर से किसी न किसी को फिर मारेगा।
0: अच्छा,
1: वो कई बार नहीं लगती तो गेंद वहीं रहती पास में, पास में गेंद रहती है तो फिर वो खिलाड़ी बचने के लिए क्या पता कि अब तो गेंद लग जाएगी तो वो छड़ी गोले के अंदर रख देते थे कि अब गोले खिलाड़ी को ना मार करके उस छड़ी में मारो।
0: अच्छा,
1: तो कई बार ये होता था छड़ी में ना लगती थी तो खिलाड़ी बच जाता था सेफ।
0: अच्छा,
1: पास में भी नजदीक में है तो ये स्थिति बनती थी यानी विकल्प के तौर पर,
0: नहीं
1: तो जिसको गेंद लगती थी वह खिलाड़ी फिर दाम देने के लिए जाता था और दाम इसी प्रकार से देता था, जितनी दूर गेंद चली गई उतनी दूर से खिलाड़ी को मारो।
0: तो
1: बचाव के लिए आप अपनी लकड़ी का सहारा ले सकते कि गेंद आपको लग न पाए, लकड़ी से फिर दूर मार दो।
0: सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है।
1: और मैम जी मैं तो यह कहूंगा कि बचपन सचमुच में मजेदार होता है, गैर जिम्मेदार होता है, आनंद के साथ बचपन सभी लोग ने बताया है
0: जी।
1: तो सभी लोग अपनी अपनी बात शेयर करें, आनंद उठाएं इस कार्यक्रम का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी।
1: जी जी, आपको भी धन्यवाद मैम जी, पूरी टीम को धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

0: देश में बाल विवाह की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन आज मंदसौर की कृषि उपज मंडी परिसर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में किसान संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। वहीं कृषि विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल व प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। हिंदी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर कल भोपाल में आयोजित मंथन कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों ने पत्रकारों को सजग रहते हुए इन चुनौतियों का मिलकर सामना करने की बात कही। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजधानी के 12 पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला के अगले 4 मुकाबले 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को क्रमशः रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म का वो नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। डबरी पारा के श्रोता ये हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र मरकाम और जयंती मरकाम। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के श्रोता भी इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। इनके नाम हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, साइमा, मुस्तबा खान और आफिया खान। पत्र में राउफ भाई और शहीद भाई का नाम भी लिखा हुआ है। गांधीबाग अकोला के श्रोता इसी गीत को सुनना चाहते हैं। यह हैं रमेश कन्नटकर और वैशाली। तो आइए सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये नगमा।

अब लीजिए सुनिए अनारकली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। सी रामचंद्र का संगीत है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। पसंद आप सब श्रोताओं की, बुरहानपुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तैमूर और भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू और परू तड़वी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। गोला बाजार बक्सर के श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही इनकी दीदी इसी गीत को सुनना चाहती हैं। बिस्वा के श्रोता हैं नारायण भाऊ, बिट्ठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो, उषा, सोरन और स्वाति, इनके साथ हैं प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं अनारकली फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुना रहे हैं देश परदेश फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, अमित खन्ना के लिखे बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये हैं ननौरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी अहिरवार, आराधना सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। इसी गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। नेहरू वार्ड सनावत से इसी गीत को पसंद किया है दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और इनके परिवार के सदस्यों ने। एक और पत्र हमें मिला है, ये पत्र लिखने वाले श्रोता हैं दुर्गई सैलू से, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं ना देश परदेश फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, जयदेव का संगीत है, गीत लिखा है जहां निसार अख्तर ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और इनके परिवार के सदस्य। बठेना से पत्र हमें मिला है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा का। सारा गांव के श्रोता हैं सुजान वर्मा, सौहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। रिंगिनी छत्तीसगढ़ के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका के श्रोता हैं शुभ चंद्र बजाज और साहिल के साथ बिट्टा बजाज। यवतमाल के श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। तो आइए सुनते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का ये नगमा।

0: प्रेम पर्वत फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भू।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज सुनिए इसकी 5वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की पांचवी कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी विमाता। ये कहानी दरवाजा, प्रेम पचीसी, मानसरोवर भाग 8, बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियों के संकलन में संग्रहित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी विमाता का रेडियो रूपांतरण।
1: श्यामा, श्यामा तुम चिंता मत करो, वैजी कह रहे हैं कि तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी।
2: ये बुखार तो मेरी जान लेकर रहेगा।

0: मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी।
1: नहीं
0: मुन्नू के बाऊजी, देखो मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो नन्हे की फिक्र खाए जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा?
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हिम्मत रखो।
0: मुन्नू मेरे बच्चे, मेरे लाल, सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं?
2: माँ तुम्हें क्या हो गया है? माँ, पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है?
1: कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे मन्नू, माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे।
0: देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है। मेरे बाद तुम्हारा और मुन्नू का ख्याल कौन रखेगा? तुमसे एक विनती है।
1: हाँ श्यामा।
0: क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे?
1: ऐसी बातें क्यों करती हो श्यामा तुम?
0: देखो हाँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मुन्नू का क्या होगा यही सोचकर मेरे प्राण अटके हैं। इतने छोटे बच्चे को तुम कैसे पालोगे? देखो मेरे बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: देखो मना मत करो, इससे मुन्नू को दूसरी माँ मिल जाएगी।
1: नहीं श्यामा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
0: देखो वादा करो, वादा करो।
1: श्यामा, श्यामा, श्यामा, श्यामा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती श्यामा।

0: शिव प्रसाद, होनी को भला कौन टाल सकता है? खुद को संभालो, हिम्मत रखो भाई।
1: माँ तुम्हें क्या हुआ है? माँ, पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है?
0: माँ बहुत दूर चली गई है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता।
1: माँ, माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? माँ, पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है।
2: मेरी बात सुनो मुन्नू बेटा।
1: नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है पिताजी, मुझे माँ के पास जाना है।
2: मुन्नू,

0: शिव प्रसाद बेटा, बेटा 2 महीने हो गए श्यामा को गुजरे, मुन्नु का ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। कितना लगाव था इसे श्यामा से, तुम ही बताओ कैसे रह पाएगा ये माँ के बगैर। इतने छोटे बच्चे को एक माँ ही संभाल सकती है। शिव बेटा, अपना ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी।
1: लेकिन काकी, क्या ये ठीक रहेगा? क्या दूसरी औरत मन्नु को सगी माँ जैसा प्यार दे सकेगी?
2: क्यों नहीं दे सकेगी, दुनिया में अच्छी आत्माएं भी तो हैं।
0: हाँ भाई साहब, मेरी चचेरी बहन है, बहुत ही घरेलू और सुशील लड़की है, अंबा नाम है उसका। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आपके घर को संभाल सकेगी और मुन्नू को माँ का प्यार भी दे सकेगी। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे चलाऊं।

0: देखिए, इससे पहले कि हम आप और तुम के शिष्टाचार से बाहर निकलें, मैं आपको बता दूं कि जिन परिस्थितियों में हमारा विवाह हुआ है वो साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि श्यामा की मृत्यु के 3 महीने बाद दूसरा विवाह करना उसकी आत्मा के साथ अन्याय है, जो किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। इस विषय में मेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल है और मैं आशा करता हूं कि भगवान मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि हर नवविवाहिता की तरह आपकी भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं अवश्य होंगी, लेकिन मेरा इन सब बातों को आपसे कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मैं आप में अपने भोले बालक मुन्नू की मां की छवि देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने प्यार से मुन्नू के दिल से मां की मृत्यु का शोक हमेशा हमेशा के लिए भुला दें।
1: जी, मैं जी जान से कोशिश करूंगी कि मुन्नू को मां की कमी का एहसास ही ना हो। हालांकि समय साक्षी है कि किसी भी युग में सौतेला शब्द संदेह सूचक ही रहा है, फिर भी मैं अपना सब कुछ लुटाकर यही कोशिश करूंगी कि सौतेलेपन की काली मां जो मेरे माथे पर लगी है वो मिटा सकूं।
0: अब मैं क्या कहूं? मुन्नू, बेटा मुन्नू, यहां आओ। लगता है थककर सो गया है।
1: चलिए हम वहीं चलते हैं।
0: हाँ, आओ चलते हैं। मुन्नू बेटा, देखो तो, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है।

0: मुन्नू बेटा लो ये दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं माँ के हाथ से ही दूध पीऊंगा।
0: बेटा माँ मंदिर तक गई है, अभी आती होंगी। जब तक तुम दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा।
0: ओहो
1: माँ आ गई, माँ आ गई, मैं खोलूंगा मैं खोलूंगा।
0: आइए आइए, संभालिए अपने लाडले को भाई, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। हाँ इन्हें अपनी माँ के हाथ से ही दूध पीना है, तुमने भी इसे अपने लाड़ प्यार से जिद्दी बना दिया।
2: आप हटिए, ये तो मेरा प्यारा बेटा है। लो बेटा अपने पिता को एक सांस में ही दूध पीकर दिखा दो।
0: वाकई अम्मा तुमने तो मुन्नू पर जादू सा कर दिया है। बेटा मुझे अभी काम पर जाना है, तुम अपनी माँ के साथ खेलो, हम शाम को घूमने चलेंगे फिर। अच्छा चलता हूँ मैं।

0: जाओ, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ।
1: मुन्नु कहाँ हो तुम बेटा? देखो किसी ऐसी वैसी जगह मत छुप जाना। अरे मुन्नु बेटा, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए।
0: माँ मैं यहाँ हूँ।
1: अरे बेटा कहाँ छुप गया, नटखट कहीं का। जरा ठहर तो, बदमाश कहीं का।
0: मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ, देखता हूँ माँ मुझे कैसे ढूंढती है।
1: यहाँ ढूंढती हूँ, यहाँ होगा वो। अरे यहाँ भी नहीं है। पकड़ लिया।
2: अरे मुन्नु
0: धप्पा।
1: ठहर तो, शरीर कहीं का। गोद में उठा लेती हूँ। मेरा प्यारा बेटा।
3: ये क्या हो रहा है भाई? माँ बेटे के बीच में? अच्छा मुन्नू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने चलना है ना।
1: और हाँ लो पार्क में ये स्वेटर पहन लेना।
3: हाँ।
1: इसे उतारना मत वरना सर्दी लग जाएगी।
3: हाँ।
1: ये जूते पहन लो और अब जल्दी से मुझे पुच्ची दो।
3: इधर भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।

0: मैं एक ले लूं?
1: नहीं बेटा, फूल पौधे पर ही सुंदर लगते हैं। तुम एक काम करो, वो नीचे गिरे हुए जो फूल है ना, हाँ उन्हें उठा लो।
0: अच्छा पिताजी।
2: और इस प्रकार विवाह को 2 महीने बीत गए। शिवप्रसाद और अम्बा दोनों ही इस प्रयास में रहे कि श्यामा की मृत्यु का शोक मुन्नो के दिल से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। शिवप्रसाद काम से लौटकर मुन्नो को रोजाना सैर को ले जाते और लौटते समय अपने मित्रों से उसे मिलवाते। मुन्नो की विलक्षण बुद्धि प्रतिभा और बाल सुलभ हरकतों से सभी मित्र बहुत प्रभावित थे और उसे बहुत प्यार करते थे। रोजाना की तरह एक दिन शिवप्रसाद मुन्नो को लेकर सैर पर निकले और अपने परम मित्र ज्वाला सिंह के घर जा पहुंचे।
3: आइए आइए शिवप्रसाद जी, और कैसे हो मुन्नू बेटा, कहां से आ रहे हैं आप लोग?
1: जी बस घूमते घूमते चले आए, सोचा बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए।
3: बड़ा अच्छा किया। और सुनाइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी ईश्वर की कृपा है, जब से अम्बा आई है घर तो जैसे स्वर्ग बन गया है। मुन्नू पर तो वो अपनी जान छिड़कती है।
4: क्यों बेटा मुन्नू, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है ना?
5: अम्बा के विषय में और इस सवाल के उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। इतने कम समय में किस प्रकार मुन्नू को अपने रंग में रंग लिया है, यही सोचकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। अरे मगर ये क्या, मुन्नू की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या अम्बा ने मुन्नू को आज कुछ कहा है? क्या अम्बा मुन्नू को प्यार नहीं करती? कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है। मेरे दिल में जो अम्बा की ममतामय छवि थी उसका चित्र लगता है टूट रहा है।
4: ये तो मुन्नू रो रहा है, मुझे शायद मुन्नू से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अभी शिवप्रसाद की शादी को हुए सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, हो सकता है अम्बा को बच्चे को समझने में कहीं कुछ कमी रह गई हो। और फिर अम्बा का मां बनने का ये पहला ही अवसर है। लेकिन शिवप्रसाद बाबू तो अम्बा की तारीफ करते थकते ही नहीं थे कि अम्बा मुन्नू का कितना ख्याल रखती है। लेकिन बच्चे की आंखों के आंसू तो झूठ नहीं बोल रहे। तो क्या शिव बाबू ने मुझसे कुछ छुपाया है? माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम बहुत सी बातें आपस में एक दूसरे को नहीं बताते। हो सकता है कि बच्चे के आंसू माँ के सौतेलेपन का स्पष्ट संकेत दे रहे हों। हो सकता है।
5: मैं तो बड़ा लज्जित सा महसूस कर रहा हूं, आंखें शर्म से गड़ी जा रही हैं। आप और अधिक यहां नहीं बैठना चाहिए। अब अच्छा ज्वाला सिंह जी, हम चलते हैं, इजाजत दीजिए।
4: अब इन्हें रुकने के लिए कैसे कहूं, बड़ी विचित्र स्थिति है।
3: जी जरूर, आते जाते रहिएगा
1: जी। अच्छा चलते हैं।

समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने दिल के क्रोध को कैसे शांत करूं, अंबा से अपना विरोध कैसे प्रकट करूं, इस मासूम के प्रति उसके इस कपट भरे व्यवहार से मेरे दिल पर ऐसा घात लगा है कि जी तो ये चाहता है कि मैं आज घर जाकर मुंह ढककर सो जाऊं, और जब अंबा मुझसे पूछे तो कहूं सिर में पीड़ा है, और जब खाने को कहेगी तो कह दूंगा कि मुझे भूख नहीं है, खुद खा लो। अंबा समझ तो जाएगी कि उसका दिल अपनी बातों के बाड़ों से भीग डालूंगा। हाँ, ऐसा रुलाऊंगा कि वो भी क्या याद रखेगी।

लेकिन ये क्या? अंबा का भोला मुस्कुराता चेहरा सोचकर मेरा क्रोध शांत क्यों हो रहा है? क्या मैं उस प्रेम की देवी के प्रति इतना कठोर रह सकूंगा जिसकी एक दृष्टि मात्र, एक मीठी बात पर एक रसीली चुटकी तक मेरी कठोरता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है? ये मेरे हृदय की कैसी निर्बलता है, ये मेरे मन की कैसी दशा है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं क्या करूं?

0: अरे मन्नू आ गए बेटा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? देखो मैंने खाने में तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं।
1: नहीं नहीं, अम्बा पर क्रोधित होना और इतनी कठोरता दिखाना अत्याचार है। उसका स्नेह और ममता देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो मुन्नू से प्यार नहीं करती। हो सकता है मुन्नू श्यामा को याद करके रो पड़ा हो। वैसे भी मुन्नू अभी बालक ही तो है। अम्बा, आज मुन्नू के कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा।
0: क्यों, ऐसा क्या हुआ?
1: अरे आज खजांची साहब के घर गए थे, वो मुन्नू से पूछ बैठे कि तुम्हारी नई अम्मा तो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तो आपके साहबजादे रो पड़े। भाई मैं तो लज्जा से गड़ गया। मुझे स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा।
0: स्वामी, मुन्नू को मैंने जिस कोमल भाव से स्वीकार किया है, हृदय की जिन गहराइयों से स्नेह किया है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
2: मुझे अपने सौतेले कहलाए जाने का
0: शायद इतना कष्ट नहीं होगा जितना ये जानकर दुख हुआ कि मैं अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली माँ ना बन सकी। मैं आगे अपने जी जान से यही कोशिश करूंगी कि मुन्नू की आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहे। उसके दुख का एक एक आंसू मेरी आंखों से निकले। स्वामी, इस बार मेरा दिल रख लीजिए और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए।
1: अम्बा, इतनी गहराई तक तो शायद मैं भी कभी नहीं पहुंचा। तुम्हारी आंखों से निकला एक एक आंसू तुम्हारा मुन्नू के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी सुना रहा है। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूं अम्बा। तुम्हारी आंखों में मुझे साक्षात श्यामा के दर्शन हो रहे हैं। उठो अम्बा, उठो।
3: शिव प्रसाद मुन्नू को लेकर अम्बा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे और इस प्रकार शिव प्रसाद की गृहस्थी के दिन आनंद से गुजरने लगे। तभी अचानक एक दिन शिव प्रसाद दफ्तर से कुछ समय पहले ही घर आ पहुंचे। दरवाजे पर मुन्नू को भीतर की ओर मुंह किए खड़े पाकर वो उसके नजदीक जा पहुंचे।
1: बड़ा ही अच्छा अवसर है, मुन्नू को पता भी नहीं चलेगा और मैं पीछे से जाकर इसकी आंखें बंद कर दूंगा। बहुत दिन हुए इससे मुझे आंख में चोरी खेले हुए। ये क्या, मेरे हाथों में ये गीलापन? अरे ये क्या, ये तो रो रहा है। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। बेटा, बेटा मुन्नू, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो?
4: नहीं अम्मा, मुझे बहुत प्यार करती है, इसी कारण मुझे बार बार रोना आता है। मेरी अम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती थी।
1: हाँ बेटा।
4: वो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं अम्मा उनसे भी अधिक प्यार करती है।
1: हाँ मेरे बच्चे।
4: इसलिए मुझे डर लगता है कि उनकी तरह ये भी मुझे छोड़कर ना चली जाए।
1: मुन्नू, मुझे तुमसे इस उत्तर की आशा कभी नहीं थी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मैं अम्बा के इस प्यार भरे व्यवहार से स्तंभित हूँ जिसने तुम्हारे हृदय पर ऐसा आघात किया है। किसी

कवि ने सच ही कहा है कि पवित्र आत्माएं इस संसार में अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। कहीं होनी तो इस बालक की जिह्वा से ये शब्द नहीं कहलवा रही। ईश्वर ना करे कि वो मनहूस दिन देखना पड़े। चलो बेटा चलो, तुम्हारी माँ के पास चलते हैं।

0: मुन्नू मेरा बेटा आजा, मेरे पास आजा, मेरा प्यारा बेटा।
1: अंबा ने स्वयं को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। सर्दी के दिन थे, वो सवेरे भोजन बनाने उठ जाया करती। उसके बहुत अधिक प्यार ने मुन्नू को बेहद नटखट और हठीला बना दिया था। जब तक अंबा भोजन कराने न बैठे, मुंह में निवाला नहीं डालता था। जब तक वो पंखा न झले, वो चारपाई पर पांव नहीं रखता था। उसे झेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता। लेकिन अंबा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। 6 महीने भी बीतने नहीं पाए थे, शायद मुन्नू की बाल दृष्टि ने भावी भविष्य को देख लिया था। अंबा बीमार पड़ गई, उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था। करवट लेने तक की शक्ति नहीं थी उसमें, शरीर तबाह हो रहा था। परंतु मुन्नू के सुबह के भोजन की चिंता उसे अब भी लगी रहती थी। शोक महाशोक देखते ही देखते अंबा को वक्त के क्रूर हाथों ने छीन लिया। मुन्नू अब शोक और वैराग्य की जीवित मूर्ति है। वो अब कभी नहीं रोता। अब उसे कोई भय नहीं रह गया था। संसार की सबसे प्रिय वस्तु खोने के बाद अब उसे कुछ भी खोने का भय नहीं रह गया था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक की 5वीं कड़ी विमाता। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, माधवा आनंद और मास्टर एलिश मोहन। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की पांचवी कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम। मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षित डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी और इसके बाद मनाली जाएंगी। राष्ट्रपति कल अटल टनल का दौरा भी करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। संवाद के दौरान कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार, एआई और ईवी जैसी उभरती तकनीकों पर युवाओं से चर्चा की जा रही है। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम

से ज्यादा आवास बनकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। मेहर गौरव दिवस पर कल 3,440 छात्र छात्राओं ने एक साथ एक लय और अनुशासन के साथ कथक की विभिन्न मुद्राएं प्रस्तुत कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

स्वागत, वंदन और अभिनंदन सभी प्यारी सखियों का उनके मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। सखियों, आपका ये मनपसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आज मैं, आपकी अपनी दोस्त शिखा साहू। स्वीकार कीजिए बहुत प्यार और बहुत सारे स्नेह के साथ मेरा नमस्कार। सखियों, हमारी धरती पर जितना अधिकार हमारा है ना, उतना ही उन जीवों का भी है जो हमारे साथ इस प्रकृति को साझा करते हैं। जंगल में दहाड़ता बाघ हो, नदी किनारे विचरता हाथी हो, पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़िया हो, या फिर फूलों पर मंडराती हुई तितली, प्रकृति की इस विशाल दुनिया में हर जीव की अपनी एक भूमिका है। और इसी रिश्ते को समझने और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। मेरी सखियों, सखियों, इसका उद्देश्य केवल जानवरों को बचाने की बात करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि वन्यजीवों का संरक्षण हमारे अपने जीवन और भविष्य के संरक्षण से जुड़ा हुआ भी है। जी हाँ सखियों, प्रकृति एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। मधुमक्खियाँ परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे अनेक पौधों और फसलों के विकास में मदद मिलती है। जंगलों में रहने वाले वन्य जीव भी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं, यानी एक छोटा सा जीव भी प्रकृति की बड़ी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सखियों। लेकिन आज जंगलों का कम होना, प्रदूषण, प्लास्टिक और अवैध शिकार जैसी गतिविधियां वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रही है। जब उनका प्राकृतिक आवास छिनता है ना सखियों, तो कई बार वे भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखें और मनुष्य तथा वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व की भावना विकसित करें। गर्मी में पक्षियों के लिए पानी रखना, घायल जीव को देखकर उचित सहायता पहुंचाना, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकना और बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये सभी हमारी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी भी जीव का हमसे अलग होना उसे नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता। जिस तरह सखियों एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती है, उसी तरह एक पक्षी भी अपने घोंसले में पल रहे बच्चे की रक्षा करना चाहता है। बोल ना पाना, महसूस ना कर पाना नहीं होता। वन्य जीव संरक्षण सखियों केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है। हमें ऐसी आदतें अपनानी होगी जिनसे प्रकृति और उसके जीवों को नुकसान न पहुंचे। जरा सोचिए सखियों, क्या हम जानवरों को केवल चिड़ियाघर में देखना चाहते हैं, या आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए केवल उनकी तस्वीरें हम मोबाइल में रखना चाहते हैं? नहीं ना। इसीलिए वन्य जीव सप्ताह पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने आसपास के जीवों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, उनके प्राकृतिक आवासों का सम्मान करेंगे और अपने बच्चों में करुणा का भाव जगाएंगे। क्योंकि सखियों, वन्य जीव बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और प्रकृति सुरक्षित रहेगी और हमारा भविष्य भी तभी सुरक्षित होगा। सखियों, अभी सुनवाती हूँ आपको एक बहुत प्यारा सा गाना और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन की। तो लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

सखियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे वन्य जीवों के संरक्षण की, वन्य जीवों के बचाव की, और हर एक जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। सखियों, वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण और वनों की रक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन यानी राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य केवल अधिक पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि वनों और हरित क्षेत्र को बढ़ाना है, उनकी गुणवत्ता को सुधारना है, जैव विविधता को सुरक्षित रखना है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में काम करना है। जी हाँ सखियों, पेड़ हमारे लिए केवल छाया देने वाले पौधे नहीं है। एक पेड़ अपने आसपास की हवा को बेहतर बनाने, मिट्टी को बचाने, जल चक्र में योगदान देने और अनेक पक्षियों तथा छोटे जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाता है। इसीलिए सखियों, जब भी हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक केवल पौधा नहीं लगाते, बल्कि अपने भविष्य के लिए जीवन की एक संभावना लगाते हैं। और एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी और ध्यान देने लायक है सखियों, कि सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी उचित देखभाल करना, उसे पानी देना, उसे सुरक्षित रखना और उसे बड़ा होने का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। और इन सभी कामों में हम महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें अपने बच्चों को पेड़ पौधों से रिश्ता बनाना सिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि जिस पेड़ के नीचे वे खेलते हैं वह केवल पेड़ नहीं, वो किसी पक्षी का घर हो सकता है, किसी राहगीर के लिए छांव हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा की उम्मीद भी हो सकती है। जी हाँ सखियों, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन क्षेत्रों की गुणवत्ता सुधारने, नए वन एवं वृक्ष आवरण को बढ़ाने और शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने जैसे कामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सखियों, सरकार का कोई भी मिशन तभी जनभागीदारी का मिशन बनता है जब हम उससे जुड़ते हैं, और बात जब प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण की हो तो हम सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सखियों, हर वर्ष 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह को मनाने की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य सखियों, समाज से छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करना है। यह सप्ताह समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय का संदेश देता है कि हमें जाति के आधार पर भेदभाव न करके सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सखियों,

0: अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। जी हाँ सखियो, एक औरत ने, एक महिला ने आज अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है। बेटियाँ आज बाहर जाकर पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उन्हें बाहर हॉस्टल में रहना पड़ता है। हम परिवार वाले बेफिक्र हैं, क्योंकि हमारी बेटियों की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार महिला के हाथों में है, और वो जिम्मेदार महिला होती है उस हॉस्टल की वार्डन। जी हाँ सखियों, माँ से दूर रह रही बेटियों की, परिवार की और उनकी माँ की कमी को पूरा करती है एक महिला हॉस्टल की वार्डन। और कैसे एक हॉस्टल की वार्डन ताउम्र एक ना भूलने वाला रिश्ता बन जाती है। जी हाँ सखियो, आज मेरे साथ है रितु शर्मा जी। आपको बता दूं कि रितु शर्मा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। तो आइए जानते हैं रितु शर्मा जी से और बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम मेरी उड़ान में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया।
0: रितु जी बिल्कुल, आमंत्रित तो करना ही था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियों वाला काम आप करती हैं। हम घर में हमारे एक या दो बच्चे संभालते हैं, वही हमारे लिए कठिन हो जाता है, पर आप तो इतनी सारी लड़कियों को, मतलब शायद 50 तो होती ही होंगी एक हॉस्टल की यदि हम बात करें, तो इतनी सारी लड़कियों को संभालती हैं, कैसे कर पाती हैं आप ये सब?
1: जी इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि एक भाव होना चाहिए, वो भाव है विलिंग टू डिलीवर। मैं अपने कार्य को या सेवा भाव में कन्वर्ट कर कर प्रस्तुत करती हूँ, और अपनी जो बच्चियाँ बाहर से आई हैं उनकी देखभाल करना, उनको कंफर्ट रखना, उनको आरामदायक और उनको सबसे बड़ी बात सुरक्षित रखने का कार्य मैं करती हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। रितु जी, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि आपका इन लड़कियों के साथ में किस तरीके का रिश्ता बनता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब हॉस्टल छोड़ के लड़कियाँ जाती है ना, तो एक वार्डन की जो छवि होती है कभी कभी तो बहुत अच्छी होती है, कि वो हमारी माँ के जैसा उन्होंने हमारा ध्यान रखा, या वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई, या फिर वो मेरी बहन जैसी थी, और कभी कभी है ना हिटलर और विलेन इस तरह की उपाधियां भी हॉस्टल वार्डन के लिए यूज होती हैं, क्योंकि चूंकि वो अनुशासन के लिए उनको सख्त रहना पड़ता है।
1: जी, जी,
0: तो आपका किस तरह का रिश्ता बनता है उनसे?
1: जी, मेरा सबसे पहला मैं रिश्ता बना कायम करती हूँ मानवता का। मानवता का के रिश्ते से ऊंचा कोई भी रिश्ता नहीं होता है। उसके बाद जो मुझे अनुशासन करना रहता है, अनुशासित रखना रहता है,

0: बच्चियों को वो मैं करती हूँ प्रेम से। मुझे लगता है प्रेम से बड़ी ताकत किसी भी संबंध को ऊंचा उठाने में रहती है।
1: जी। तो क्या आसानी से मानती हैं लड़कियां इन पाबंदियों को और इन अनुशासन संबंधी नियमों को? कहीं वो आपको तानाशाह तो नहीं समझती?
0: नहीं, मैं उनको बहुत प्यार से डील करती हूँ और बच्चियाँ मानती भी हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो अनुशासित रहते हैं, अनुशासन का महत्व भी समझते हैं और वो समझते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आता है कि इसके पीछे उन्हीं की सुरक्षा है, अच्छा भाव रहता है, उन्हीं को बेहतर बनाने की हमारी कोशिश रहती है।
1: बिल्कुल, बेहतर बनाने की कोशिश रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो एक अच्छी वाली वार्डन के रूप में ही आपकी जो छात्राएं हैं वो याद रखती होंगी। रितु जी, आप
0: जी
1: एक हॉस्टल वार्डन हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: क्या ड्यूटी आवर्स हैं, किस तरह से आप तालमेल बिठाती हैं अपने परिवार में और
0: जी
1: अपने जॉब में?
0: जी जी
1: क्योंकि हॉस्टल वार्डन यानी
0: जी
1: 24 घंटों का जॉब।
0: जी जी मैं इन्हें घंटों में नहीं तोलती, बच्चियों को भी मैं टाइम दे पाती हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी टाइम देना पसंद करती हूँ मैं। हॉस्टल वार्डनशिप एक जिम्मेदारी है। जब आपके हॉस्टल में किसी बच्ची को आवश्यकता है तब आपके ड्यूटी आवर्स हैं, वो चाहे दिन का हो या रात का हो, वो समय की सीमा में नहीं बंधा हुआ, ये बच्चे की आवश्यकता से बंधा हुआ
1: तो
0: है।
1: आप उसी कैंपस में रहती हैं?
0: जी, मैं उसी कैंपस में रहती हूँ। बच्चे की अगर आधी रात में आवश्यकता है, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उसके लिए
1: जी
0: उपलब्ध रहती हूँ। प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, आवश्यकता है तो हम डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं।
1: नहीं, मेरा ये सवाल यहाँ ये है कि जैसे अभी आप मेरे साथ यहाँ इंटरव्यू
0: जी
1: के लिए
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो इस समय वहाँ की व्यवस्थाओं को कौन दिख रहा है?
0: जी
1: कौन
0: हम
1: कौन आपके सहयोगी होते हैं? किस
0: जी
1: तरह से आप इस काम
0: जी
1: को
0: जी
1: अंजाम देती हैं?
0: जी जी इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं और एक बहुत बड़ी सी टीम है हमारे पास। कुछ सफाई कर्मी है हमारे पास, महिला सफाई कर्मी है, कुछ एक दो हम लोगों ने लेडी गार्ड रखी हुई है जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, एक दो लेडी अटेंडेंट हैं जो ध्यान रखती हैं बच्चे की हर तरह से सुरक्षित रहे और उनकी आवश्यकताएं पूरी हों।
1: हाँ, क्योंकि ऋतु जी, हम जो है ना सामाजिक परिवेश में रहते हैं, परिवार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ आपको सामाजिक कार्यों के लिए भी बाहर
0: जी
1: जाना
0: जी
1: पड़ता
0: जी
1: होगा,
0: जी
1: जैसे आप अभी मेरे साथ यहाँ
0: जी
1: इंटरव्यू के लिए
0: जी
1: हैं। तो
0: जी
1: वही मेरे मन में प्रश्न
0: हाँ
1: था कि इस
0: हाँ
1: समय वहाँ पे क्या हो रहा
0: ओके
1: होगा।
0: जी, अभी तो सारी बच्चियां जो हैं कॉलेज जा चुकी हैं,
1: जी,
0: हॉस्टल में है नहीं कोई, पर उस बीच में हमारी सफाई कर्मी और लेडी अटेंडेंट, लेडी गार्ड हमारे पास हैं जो
1: जी।
0: वहाँ पर रहती हैं। अगर कोई बच्चा आता जाता है तो उनकी निगरानी रखती हैं, अगर उनकी कोई आवश्यकता है तो वो पूरी करती हैं।
1: जी, मतलब ये एक पूरा टीम वर्क
0: टीम
1: होता
0: वर्क
1: है।
0: है, इट इज़ नॉट अ सिंगल वर्क।
1: जी हाँ सखियो, बस यही बात एक सफल महिला की निशानी है कि वो अपने आप को हर मोर्चे पर साबित करे, घर भी बहुत अच्छे से संभाले और बाहर भी बहुत अच्छे से काम करे। और आप अपना काम बखूबी कर रही हैं रितु जी। सखियो, आप सुन रही हैं मेरी उड़ान में रितु शर्मा जी से मेरी यानी शिखा साहू की बातचीत। अब मैं रितु जी से यहाँ जानना चाहती हूँ कि रितु, हॉस्टल में हर जगह की लड़कियाँ होंगी,
0: जी हाँ
1: अलग अलग स्वभाव की होंगी, अलग
0: जी
1: अलग
0: हाँ
1: पसंद रखने वाली होगी, कोई खाने में ना नुकुर करती होगी, कोई स्वभाव की सीधी होगी, कोई तेज होगी, कोई भावुक होगी।
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: किस तरह की परेशानियां आपका आप सामना करती है? परेशानियों वाला प्रश्न पहले मैं इसलिए कर रही हूं ताकि बाद में हम जान सके कि आप उन परेशानियों को दूर कैसे करती
0: मैं वहाँ पर दो रोल प्ले करती हूँ,
1: हैं।
0: एक मैं शिक्षक का रोल प्ले करती हूँ और एक प्ले करती हूँ मैं माँ का रोल, और दोनों ही इतने उत्तरदायित्व वाले रोल रहते हैं। जब आप माँ बन के उनको देखती हैं तो समझ पाती हैं उनकी परेशानियाँ।
1: पर कई मामलों में तो सख्त तो होना पड़ता होगा
0: जी
1: ना?
0: हाँ, सख्त रहता है, जैसे हम लोग टाइमिंग के लिए बिल्कुल सख्त हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए हम समय के बड़े पाबंद रहते हैं। अगर बच्चे का आने का टाइम फिक्स है तो उससे हम बच्चे को लेट नहीं होने देते, बच्चों के लिए वहाँ सख्ती रहती है।
1: यदि लेट हो गए तो फिर क्या?
0: लेट होते हैं तो हम इनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, एंट्री करवाते हैं और बच्चा समझता है कि इसके बाद हमको लेट नहीं होना है।
1: जी बिल्कुल, मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है रितु जी कि सुरक्षा जो है उसको आप लोग प्राथमिकता देते हैं। तो सुरक्षा के लिए आपके हॉस्टल में क्या-क्या इंतजामात है ये भी बता दीजिए।
0: जी, सुरक्षा के लिए हमारे पास कैंपस में दो तीन गार्ड रहते हैं, अंदर हमारे हॉस्टल में जो है वो लेडी गार्ड रहती है, बाहर की तरफ, अंदर तरफ तो हम कैमरे नहीं लगाए हुआ है पर बाहर की तरफ हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर व्यक्ति के आने जाने पे निगरानी रखी जाती है। विजिटर्स आते हैं तो उनकी रजिस्टर में एंट्री की जाती है, वो लेडी गार्ड से मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं, तभी वो अंदर हॉस्टल में प्रवेश कर पाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएँ होती हैं।
1: जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर ऋतु जी कि आप इतने जिम्मेदारी

0: भरे काम को इतने प्यार और अपनेपन से निभा रही है, और आप जैसे लोगों की वजह से ही हॉस्टल को परिवार से दूर एक परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत अच्छा लगा रितु जी आपसे बात करके, आप जैसी महिलाएं प्रेरणा हैं। उम्मीद करते हैं कि सखियां इस बातचीत से लाभान्वित होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी।

सखियो चलिए अब आपको लिए चलते हैं महिला सभा के किचन में, यानी फूड जोन में, एक ऐसा क्रम जिसमें हम आपके साथ करती हैं साझा कुछ ऐसी रेसिपीज जो बड़े कम समय में आपके किचन में उपलब्ध सामान से बन जाए, स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी हो। जी हाँ सखियो, अक्सर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं और खाएं जिसमें स्वाद के साथ स्वास्थ्य लाभ भी हो। तो चलिए बनाते हैं आज हमारे फूड जोन में अंकुरित मूंग का स्मोकी सलाद। जी हाँ सखियो, इसके लिए आपको लेना होगा अंकुरित मूंग एक कटोरी, खीरा बारीक कटा हुआ आधा कटोरी, टमाटर और प्याज भी बारीक कटे हुए आधा आधा कटोरी, ये सब हमें लेना है। अगर आपको लगता है तो आप प्याज की मात्रा कम कर सकती हैं। एक स्वीट कॉर्न ले लीजिए, उसे हल्का सा भून कर या फिर उबाल कर उसके दाने निकाल कर उन्हें भी थोड़ा हल्का दरदरा कर लीजिए, ये आपको लेना है आधा कटोरी। आधी कटोरी अनार के दाने भी ले लीजिए। इसके साथ ही 2 से 3 चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने, 1 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ और 1 हरी मिर्च वो भी बारीक कटी हुई, 2 छोटे चम्मच सरसों या फिर जैतून का तेल, 2 चम्मच इमली का पल्प और स्वाद अनुसार नमक और काला नमक। तो चलिए सखियो, ये सामग्री इकट्ठी करने के बाद अब बनाते हैं अंकुरित मूंग का स्मोकी फ्लेवर वाला सलाद जो वेट लॉस के लिए ना एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सीक्रेट चटनी, जिसके लिए आप एक खल में मूंगफली के दाने, अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया, सरसों का तेल और इमली का पल्प डालकर दरदरी सी चटनी जैसी बना लीजिए। अब एक बोल में सलाद की सारी सामग्री यानी मूंग, खीरा, टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न और अनार के दाने ले लीजिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला मिलाकर जो चटनी हमने मूंगफली धनिया वाली बनाई थी ना, वो इसमें मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाकर खूब सारा हरा धनिया डालिए। अब इसमें हम डालेंगे स्मोकी फ्लेवर, और उसके लिए करना ये है कि हमें कोयले के टुकड़े को आंच पर गर्म करें और इसे सलाद के ऊपर रखकर गर्म कोयले पर थोड़ा सा घी या फिर सरसों का तेल डालें और तुरंत ढक्कन बंद कर दीजिए। स्मोक का फ्लेवर सलाद को बहुत स्वादिष्ट बना देगा। तो सखियो, स्मोकी फ्लेवर का ये अंकुरित मूंग वाला जो सलाद है वो बनाइए, खाइए और अपने पूरे परिवार की ढेर सारी बहुत सारी तारीफें बटोरिए और साथ में सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

सखियों, इस बहुत खूबसूरत गाने के बाद अब बारी हमारे क्रम रूपलावण्य की, जिसमें हम बातें करते हैं कुछ सजने सवरने की और अपना ख्याल रखने की। जी हाँ सखियों, मौसम ने करवट बदल ली है और इस बदलते मौसम में जब ठंड की आमद अब धीरे धीरे होने वाली है, वातावरण में शुष्कता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हम हमारी त्वचा का, हमारे बालों का, हमारे होठों का और हमारे नाखूनों का ख्याल किस तरह से रखें, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी महिला सभा में हम ऐसे विषयों पर आपके लिए लेकर आते हैं जानकारियों का खजाना। तो चलिए सखियों, आपको बताती हूँ कि इस बदलते मौसम में अपनी खूबसूरती का ख्याल आप कैसे रखें। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। नहाने के लिए बहुत गर्म पानी से बचें, गुनगुना पानी ही बेहतर होता है, और नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से सुखाकर मॉइस्चराइज करना ना भूले। सखियों, कोहनी, घुटने, एड़ियों और हाथों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती शुष्कता हमारे शरीर के इन हिस्सों पर सबसे जल्दी प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं सखियों चेहरे की। मौसम बदलने पर त्वचा रूखी और संवेदनशील महसूस हो सकती है सखियों, इसलिए बहुत ज़्यादा फेस वॉश या कठोर स्क्रब के बजाय त्वचा के अनुसार हल्के क्लींजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घर से बाहर जाने पर तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो भी सनस्क्रीन दिन में एक बार ज़रूर लगाइए। सखियों, बदलते मौसम में होठों का रूखापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दिन में कई बार अच्छा सा एक लिप बाम लगाते रहिए और होठों को बार बार जीभ से गीला करने की आदत से हमें बचना चाहिए। इन दिनों शुष्कता के चलते होठों की सबसे ऊपरी परत पपड़ी बनकर निकलती है, तो कई लोगों की आदत होती है कि उसे छीलकर वो अपने होठों को जख्मी कर लेते हैं, तो ये ना करें। अच्छा सा लिप बाम लगाएं जो आपके होठों की नरमी को बनाए रखेगा। अब सखियों, बातें करते हैं बालों की। मौसम बदलने पर बाल रूखे और बेजान लग सकते हैं। बालों में नियमित रूप से तेल लगाना, बहुत गर्म पानी से बाल न धोना और गीले बालों को जोर से न रगड़ना जैसी छोटी छोटी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सखियों, कुछ ही दिनों में त्योहार भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करती हैं तो उससे बचें, क्योंकि यह भी बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। सखियों, खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, मौसमी फल सब्जियां खाना, प्रोटीन और पौष्टिक भोजन लेना और पूरी नींद लेना, ये आपकी त्वचा, बालों और पूरे शरीर की सेहत में दिखाई देता है। तो इस बदलते मौसम में खूबसूरती का मंत्र बहुत सीधा है। चेहरे पर ध्यान दीजिए, लेकिन चेहरे तक सीमित मत रहिए, सिर से पैर तक अपनी देखभाल कीजिए। तो सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। तो अब अनुमति दीजिए अपनी दोस्त शिखा को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं ममता शर्मा के गाए लोकगीत और इसके बाद आप सुनेंगे नंदिनी शरण के गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे नंदिनी शर्मा के गाए भजन। इससे पहले आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे ममता शर्मा, और उसके बाद में आपने सुना सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें कलाकार थी नंदिनी शरण। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थे। इसी के साथ ही लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों की आवाज में एक गीत। फिल्म का नाम है सम्राट। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भोपाल में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया। लाल परेड मैदान में आयोजित कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से 20,000 से अधिक युवा शामिल हुए। संवाद के दौरान एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार वैल्यू चेन विकसित करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
1: सच में हमारी सरकार के माध्यम से आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग से लगा करके खेत तक लगातार वैल्यू चेन बनाते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, खास करके हमारे कई सारे युवा मित्रों ने अब अपनी कृषि में बहुत सारे प्रयोग भी किए। अब तो ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ हो रहा है, ये बदलते दौर का समय है, और मशरूम की खेती से भी कमा रहे हैं। ऐसे में हमारे राज्य ने पूरे देश में गत वर्ष ही 14.25 लाख किसानों से गेहूं का उपार्जन किया। जोरदार ताली बजाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। इसमें एमपीपीएससी 2 बार परीक्षा कराएगा, साथ ही 12 मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी भी खोली जाएंगी, जिससे युवाओं को नए स्किल्स सीखने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नक्सल उन्मूलन के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन अमले की फील्ड गतिविधियों में तेजी आई है। अब वन अधिकारी और कर्मचारी दिन रात बेझिझक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एमस्ट्राइप पेट्रोलिंग एप्लीकेशन के जरिए पैदल गश्त को प्रभावी बनाया गया है और रेंज ऑफिसर, एसडीओ और फील्ड स्टाफ की टीमें रात में भी नियमित निगरानी कर रही हैं। इस बदलाव का असर पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। कान्हा, किसली, मुक्की और सरही क्षेत्रों में पर्यटक अब पहले की तुलना में अधिक सहजता से पहुंच रहे हैं। वहीं बफर क्षेत्र से लगे गांवों में ग्रामीण बैठकें और विकास गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उप संचालक पीके वर्मा ने बताया,
2: मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व सब प्रतिदिन कोई ना कोई एक जो है पूरी रात भर रात्रि में गश्ती में रहते हैं तो पूरे क्षेत्र में, जबकि उस समय पे थोड़ा सा ये चीज़ अवॉइड करना होती थी। जैसे कि मुख्यालय या पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी निर्देश मिलते थे कि आप इस तरीके से टाइम बाय टाइम विभिन्न क्षेत्रों में न जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पूरा सभी तरफ हमारे क्षेत्र में स्टाफ, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, सभी जगह जा रहे हैं।
0: बालाघाट जिले के करंजा में आज आरएसएस सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की पैतृभूमि करंजा में लोकार्पण कार्यक्रम होगा। नेत्रालय का संचालन माधव नेत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस सेवा प्रकल्प से लांची, किरनापुर और आमगांव क्षेत्र के ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में नेत्र चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। 37 साल की हरमनप्रीत ने गुवाहाटी में बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला सुनाया। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने पिछले साल अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था और टीम ने एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। हरमनप्रीत आगे भी सभी फॉर्मेट में एक खिलाड़ी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छूटे हुए और पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर में भी आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत जिले में 1 से 19 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को 8,15,429 हितग्राहियों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 आपकी जगह 2:15 10 मिनट होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
3: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्ति

0: कारण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
7: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
7: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाना, जिसको लिया है हमने फिल्म प्रेम कहानी से। इसमें दूसरी आवाज है किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश है वो है कवई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, ग्राम सनोतिया जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कंवर कॉलोनी बड़वाह से लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये पत्र है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता और अरुणा कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म यकीन से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है और ये फिल्म 1969 में रिलीज़ हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है ये ख़त है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, श्वेता, सुमित, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं महेंद्र प्रसाद प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, कुमारी जयंती मरकाम और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं छपला राजस्थान से, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना ये गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चाई का एक गीत। आवाज़ आयशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। 1970 में ये फिल्में रिलीज़ हुई थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है संत साहेब रेडियो श्रोता संघ नानोरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी आराधना, सोनिका उपमा, नैतिक वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है ज़िला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहज से सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से। लिखा है मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी ने यह खत लिखा है, और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राचीन नेमा के। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम सच्चाई।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक, फिल्म का एक गाना। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण की, मजू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। आनंद मिलन का संगीत है। ये फिल्म 1988 में रिलीज़ हुई थी। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिहा, शोएब, साइमा, मुश्तबा, आफिया, रऊफ खान, शाहिद भाई, और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की। सुनते हैं ये गाना।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बगावत का एक गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और ये फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामड़ी मनोरा से, तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रविजल और अनुत्र डेरे ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी थी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है शाहू नगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी मनवर और स्वीटी बेबी प्रियांशी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है घंटाघर चौक खंडवा से, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोली, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। तो सुनते हैं ये गीत।

0: डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ता है। वे आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% का था। ये संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित की है, जिसमें नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों का प्रावधान है। भोपाल में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया। लाल परेड मैदान में आयोजित कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से 20,000 से अधिक युवा शामिल हुए। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। 37 साल की हरमनप्रीत ने गुवाहाटी में BCCI की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला सुनाया। और प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 6:30 पर और 8:35 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6 बजे। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं 7:30 पर। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू प्रोग्राम कहकशां। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत अभय फगरे का बांसुरी पर बजाया राग मारू बिहाग। संगतकार होंगे तबले पर मनोज पाटीदार। ये थे हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:02 होने को है। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:02 पर आप हमारे मीडियम वेव पर प्रसारण सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। सबसे पहले आप सुनेंगे ममता शर्मा के गाए बुंदेली मालवी लोकगीत और इसके बाद में आप सुन सकते हैं नंदिनी शरण का गाए भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा। शुरुआत करते हैं ममता शर्मा के गाए मालवी लोकगीत से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे ममता शर्मा, जिनसे आपने सुने मालवी लोकगीत और बाद में आपने सुना सुगम संगीत में नंदिनी शरण से भजन। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत, और चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पवित्र गंगा का एक गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फारूक कैसर ने इस गाने को लिखा है और एम रंगा राव और दिलशाद कमाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म हीरो का चोर फिल्म से। आवाज़ें एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, सोनी कौनमी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

हमसे बढ़कर कौन, इस फिल्म का अब हम आपको गाना सुनवा रहे हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की हैं। रविंद्र रवेल का ये गाना लिखा हुआ है और राम लक्ष्मण का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म खुदा कसम से, आवाज़ एक बार फिर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

इस समय डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का चितपट संगीत। अगला गाना हमने लिया है खून का रिश्ता फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा उषा मंगेशकर की। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत दिया है। सुनते हैं ये गाना।

0: इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं बल्कि अच्छी प्लानिंग, मजबूत स्थानीय सिस्टम और पानी के मैनेजमेंट में समुदायों को शामिल करना भी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जल प्रबंधन मॉडल पर एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में छपे लेख को साझा करते हुए ये बात कही। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर सागर और बुंदेलखंड के लिए वन्यजीव संरक्षण का एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनों से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ता है। वे आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में अनुमान 6.6% का था। और भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। 37 साल की हरमनप्रीत ने गुवाहाटी में बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला सुनाया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। शब्द सागर में आप सुनेंगे काव्य पाठ प्रीति खरे का और संतोष खिराड़कर का। तो पहले शुरुआत करते हैं प्रीति खरे से।
2: नमस्कार। रेडियो

सुनने वाले सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद रचनाएं। मेरी पहली रचना है जो रूप घनाक्षरी में आपके सामने रख रही हूँ कि भोर होते ओ सिझड़ी

0: अंजूरी दुलार झरे मिटा रहे काम क्रोध, अंजूरी दुलार झरे मिटा रहे काम क्रोध।
1: और अगली रचना में स्त्री की व्यथा कथा को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ छंद मुक्त ये रचना के माध्यम से। इस समय में जब स्त्री से पूछा जाता है, इतना सब तुम आखिर संभाल कैसे लेती हो, वो क्षण भर ठहरती है मानो भीतर शब्दों का एक पूरा संसार हो, पर उत्तर के स्थान पर वो बस एक हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर टिका लेती है। वो मुस्कान साधारण नहीं होती, उसमें बसती है सदियों की सहन शक्ति, अनगिनत त्यागों की गरिमा और टूट कर बिना झुकने वाले अदम्य साहस का संक्षिप्त इतिहास। इतिहास ने अक्सर उनके नाम कम लिखे हैं, पर सच यही है समय के सबसे कठिन मोड़ों पर जीवन की डोर उसी ने थामी है, उसी ने बिखरते घरों को जोड़ा है, थिरकते मनों को सहलाया है और अपने भीतर उठते असंख्य तूफानों को खामोशी की गांठों में बांध लिया। घर की देहरी से दफ्तर की मेज तक, रिश्तों की उलझनों से समय की भागती रफ्तार तक वो स्त्री एक शांत दीपक की तरह निरंतर जलती रहती है। न उसे शोर चाहिए न प्रशंसा का उत्सव, वो बस इतना दीप जलाए रखना चाहती है कि अंधेरा ना छा पाए। उसका प्रेम घोषणाओं में नहीं दैनिक जीवन की साधारण आहटों में बसता है, ठंडी होती चाय में, समय पर रखी दवा में, थके कंधों पर सहारा देते हाथ में और आंखों में अनकहे वादे, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वो कोई भव्य क्षण नहीं मांगती, न ताली बजाती भीड़, बस इतना चाहती है कि उसकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि इस कठोर और भागते समय में जीवन को थामे रखने की वजह अक्सर स्त्री की वही मुस्कान होती है जो हर पीड़ा के बाद भी टूटती नहीं बल्कि और गहरी होती जाती है। और शायद यही कारण है जहां दुनिया थकती है वहां आशा उठती है, किसी स्त्री की शांत पर अडिग मुस्कान से। अब मैं आपके सामने एक सजल रखना चाहती हूँ और कुछ तरन्नुम में प्रस्तुत करती हूँ, आनंद लीजिएगा। कभी

एक छोटी सी रचना और आपके सामने रखती हूँ और घनाक्षरी के माध्यम से रखती हूँ और आशा करती हूँ आप श्रोता पसंद करेंगे। कि घुल मिल साथ रहे, घुल मिल साथ रहे, एक धार बहे चलो, मीठे मीठे बोल कहे।

जले सुगण मिले संस्कार। रोम रोम प्रीत पगे, रोम रोम प्रीत पगे, शुद्धि बुद्धि ने हजगे। रोम रोम प्रीत पगे, शुद्धि बुद्धि ने हजगे, ईर्षा द्वेष दूर भगे, उज्ज्वल सुविचार। कि साथी पंछी।

और मित्रों, अब मैं आपके सामने चंद दोहे रखती हूँ जो संगीत आधारित हैं कि मनमोहन की बांसुरी छेड़े मधुरिम भाव, मनमोहन की बांसुरी छेड़े मधुरिम भाव, नाद स्वरों की रागिनी भर देती सब घाव। शांत सरोवर ढूंढते सरस सुहानी रात, शांत सरोवर ढूंढते सरस सुहानी रात, झींगुर का संगीत है बाज लगाए घात। ठुमरी गाती गोपिका माधव संगतकार, ठुमरी गाती गोपिका माधव संगतकार, भौरे ढोलक थाप दे बहे सुरों की धार। मेघ बरसते देखिए कान्हा लुक छिप रूप, ढोल नगाड़े बज रहे लगे खिली हो धूप। जल तरंग बजने लगा पंचम स्वर है बोल, जल तरंग बजने लगा पंचम स्वर है बोल, यमुना नेह लुटा रही केशव करे किलोल। सप्त सुरों की बानगी भूल गए अवरोह, सप्त सुरों की बानगी भूल गए अवरोह, बूंदों के संगीत में ढूंढे पंछी खोह। भजन सुनाए माधवी नूपुर।

0: की झनकार, भजन सुनाए माधवी नूपुर की झनकार, मंत्र मुग्ध सब डूबते जुड़े सभी के तार। कजरी गाती राधिका धैवत सोहे नाथ, ओठन बंसी धारते थिरक उठे हैं हाथ। करे सुरों की साधना, करो सुरों की साधना मिटे रोग संत्रास, करो सुरों की साधना मिटे रोग संत्रास, स्वच्छ हृदय रस घोलते असुर भावना ह्रास। पंचम स्वर सधने लगा नवयुग का प्रारंभ, पंचम स्वर सधने लगा नवयुग का प्रारंभ। सप्त सुरों की मालिका मिटे द्वेष और दंभ, सप्त सुरों की मालिका मिटे द्वेष और दंभ, मिटे द्वेष और दंभ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं संतोष खिरवड़कर आपके समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत है मेरी पहली रचना, एक गजल तरन्नुम में। मिला हर कदम मुझको धोखा बहुत है, मिला हर कदम

मगर तुझ पे फिर भी भरोसा बहुत है, मगर तुझ पे फिर भी। और ये शेर देखें कि दिला कर यकीन, दिल को तोड़ा सभी ने, दिला कर यकीन, दिल को

मगर तुझ पे फिर भी। ये गजल का शेर बतौर खास, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कोई इजहार करना, जरूरी नहीं कोई इजहार करना, मुझे देखते हो तुम इतना बहुत है, मुझे देखते हो।

है, करूं क्यों न बातें मैं तन्हाइयों से करूं।

मगर तुझ पे फिर भी भरोसा बहुत है, मगर तुझ पे फिर भी। ये गज़ल का मक्ता।

0: ही संतोष, लेकिन खुशी से दिलों को भी जीता बहुत है, खुशी से दिलों को भी जीता बहुत है, मगर तुझ पे फिर भी भरोसा बहुत है, मगर तुझ पे फिर भी भरोसा बहुत है, मगर तुझ पे फिर भी।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है मेरी अगली रचना, यह भी गज़ल तरन्नुम में है। गज़ल का मतला कुछ यूं है कि
0: पास आकर उसे यूं दूर नहीं होना था, पास आकर उसे

था, और होना था तो मगरूर नहीं होना था। रहनुमा बन के वो एहसान जताए मुझ पर, रहनुमा बन के वो एहसान जताए मुझ पर। इस कदर भी मुझे मजबूर नहीं होना था, इस कदर भी मुझे मजबूर नहीं होना था। ये गज़ल का शेर बतौर ख़ास, जी हुजूरी करूँ मैं क्यों भला इस दुनिया की,

था और होना था तो मगरूर नहीं होना था। गम नहीं होता, गम नहीं होता अगर भूल वो जाता मुझको। गम नहीं होता अगर भूल वो जाता मुझको, पर उसे भूल के रंजूर नहीं होना था, पर उसे भूल के रंजूर नहीं होना था। और होना था तो मगरूर नहीं होना था। ये गज़ल का मक्ता। हुस्न संतोष, हुस्न संतोष निहारे न भला क्यों तुझको। हुस्न संतोष निहारे न भला क्यों तुझको। इस कदर भी तुझे पुरनूर नहीं होना था, इस कदर भी तुझे पुरनूर नहीं होना था।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 5वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की पांचवी कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी विमाता। ये कहानी दरवाजा, प्रेम पचीसी, मानसरोवर भाग 8, बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियों के संकलन में संग्रहित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी विमाता का रेडियो रूपांतरण।
1: श्यामा, श्यामा तुम चिंता मत करो, वैजी कह रहे हैं कि तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी।
2: ये बुखार तो मेरी जान लेकर रहेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी।
1: नहीं
2: मुन्नु के बाऊजी, देखो मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो नन्हे की फिक्र खाए जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा?
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो, हिम्मत रखो।
2: मुन्नू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं?
3: माँ, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है?
1: कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे मन्नू, माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे।
2: देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है। मेरे बाद तुम्हारा और मुन्नू का ख्याल कौन रखेगा? तुमसे एक विनती है।
1: हाँ श्यामा।
2: क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे?
1: ऐसी बातें क्यों करती हो श्यामा तुम?
2: देखो, मेरे पास समय बहुत कम है, मुन्नू का क्या होगा यही सोचकर मेरे प्राण अटके हैं। इतने छोटे बच्चे को तुम कैसे पालोगे? देखो, मेरे बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना।
1: क्या कह रही हो तुम?
2: देखो, मना मत करो, इससे मुन्नू को दूसरी माँ मिल जाएगी।
1: नहीं श्यामा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
2: देखो, वादा करो, वादा करो।
1: श्यामा, श्यामा, श्यामा, श्यामा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती श्यामा।

0: शिव प्रसाद होनी को भला कौन टाल सकता है। खुद को संभालो, हिम्मत रखो भाई।
1: माँ तुम्हें क्या हुआ है? माँ पिताजी, माँ को क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है?
0: माँ बहुत दूर चली गई है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता।
1: माँ माँ माँ तुम कहाँ चली गई? माँ पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है।
2: मेरी बात सुनो मुन्नू बेटा।
1: नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है पिताजी, मुझे माँ के पास जाना है।
2: मुन्नू

0: शिव प्रसाद बेटा, बेटा 2 महीने हो गए श्यामा को गुजरे। मुन्नू का ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। कितना लगाव था इसे श्यामा से। तुम ही बताओ कैसे रह पाएगा ये माँ के बगैर। इतने छोटे बच्चे को एक माँ ही संभाल सकती है। शिव बेटा, अपना ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी।
1: लेकिन काकी, क्या ये ठीक रहेगा? क्या दूसरी औरत मन्नू को सगी माँ जैसा प्यार दे सकेगी?
2: क्यों नहीं दे सकेगी, दुनिया में अच्छी आत्माएं भी तो हैं।
0: हाँ भाई साहब, मेरी चचेरी बहन है, बहुत ही घरेलू और सुशील लड़की है, अम्बा नाम है उसका। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आपके घर को संभाल सकेगी और मुन्नू को माँ का प्यार भी दे सकेगी। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे चलाऊं।

0: हमारे परिवार में आपका स्वागत है अम्बा। देखिए, इससे पहले कि हम आप और तुम के शिष्टाचार से बाहर निकलें, मैं आपको बता दूं कि जिन परिस्थितियों में हमारा विवाह हुआ है वो साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि श्यामा की मृत्यु के 3 महीने बाद दूसरा विवाह करना उसकी आत्मा के साथ अन्याय है, जो किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। इस विषय में मेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल है और मैं आशा करता हूं कि भगवान मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि हर नवविवाहिता की तरह आपकी भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं अवश्य होंगी, लेकिन मेरा इन सब बातों को आपसे कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मैं आप में अपने भोले बालक मुन्नू की माँ की छवि देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्यार से मुन्नू के दिल से माँ की मृत्यु का शोक हमेशा हमेशा के लिए भुला दें।
1: जी, मैं जी जान से कोशिश करूँगी कि मुन्नू को माँ की कमी का एहसास ही ना हो। हालांकि समय साक्षी है कि किसी भी युग में सौतेला शब्द संदेह सूचक ही रहा है, फिर भी मैं अपना सब कुछ लुटाकर यही कोशिश करूंगी कि सौतेलेपन की कालिमा जो मेरे माथे पर लगी है वो मिटा सकूं।
0: अब मैं क्या कहूं? मुन्नू, बेटा मुन्नू, यहां आओ। लगता है थककर सो गया है।
1: चलिए हम वहीं चलते हैं।
0: हाँ, आओ चलते हैं। मुन्नू बेटा, देखो तो, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है।

0: मुन्नू बेटा लो ये दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं माँ के हाथ से ही दूध पीऊंगा।
0: बेटा माँ मंदिर तक गई है, अभी आती होंगी। जब तक तुम दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा।
0: ओहो
1: माँ आ गई मैं खोलूंगा।
0: आइए आइए, संभालिए अपने लाडले को भाई, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। हाँ इन्हें अपनी माँ के हाथ से ही दूध पीना है, तुमने भी इसे अपने लाड प्यार से जिद्दी बना दिया।
2: आप हटिए, ये तो मेरा प्यारा बेटा है। लो बेटा अपने पिता को एक सांस में ही दूध पीकर दिखा दो।
0: वाकई अम्मा तुमने तो मुन्नू पर जादू सा कर दिया है। बेटा मुझे अभी काम पर जाना है, तुम अपनी माँ के साथ खेलो, हम शाम को घूमने चलेंगे फिर। अच्छा चलता हूँ मैं।

0: मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ?
1: मुन्नू कहाँ हो तुम बेटा? देखो किसी ऐसी वैसी जगह मत छुप जाना। अरे मुन्नू बेटा, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए।
0: माँ मैं यहाँ हूँ।
1: अरे बेटा कहाँ छुप गया? नटखट कहीं का, जरा ठहर तो, बदमाश कहीं का।
0: मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ, देखता हूँ माँ मुझे कैसे ढूंढती है।
1: यहाँ ढूंढती हूँ, यहाँ होगा वो। अरे यहाँ भी नहीं है। पकड़ लिया।
2: अरे मुन्नू
0: धप्पा।
1: ठहर तो, शरीर कहीं का। गोद में उठा लेती हूँ। मेरा प्यारा बेटा।
3: ये क्या हो रहा है भाई? माँ बेटे के बीच में? अच्छा मुन्नू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने चलना है ना।
1: और हाँ लो पार्क में ये स्वेटर पहन लेना।
3: हाँ।
1: इसे उतारना मत वरना सर्दी लग जाएगी।
3: हाँ।
1: ये जूते पहन लो और अब जल्दी से मुझे पुच्ची दो।
3: इधर भी इधर भी इधर भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।

0: पिताजी ये फूल कितने सुंदर है, मैं एक ले लूं?
1: नहीं बेटा, फूल पौधे पर ही सुंदर लगते हैं। तुम एक काम करो, वो नीचे गिरे हुए जो फूल है ना, हाँ उन्हें उठा लो।
0: अच्छा पिताजी।
2: और इस प्रकार विवाह को 2 महीने बीत गए। शिव प्रसाद और अंबा दोनों ही इस प्रयास में रहे कि श्यामा की मृत्यु का शोक मुन्नू के दिल से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। शिव प्रसाद काम से लौटकर मुन्नू को रोजाना सैर को ले जाते और लौटते समय अपने मित्रों से उसे मिलवाते। मुन्नू की विलक्षण बुद्धि प्रतिभा और बाल सुलभ हरकतों से सभी मित्र बहुत प्रभावित थे और उसे बहुत प्यार करते थे। रोजाना की तरह एक दिन शिवप्रसाद मुन्नू को लेकर सैर पर निकले और अपने परम मित्र ज्वाला सिंह के घर जा पहुंचे।
3: आइए आइए शिवप्रसाद जी, और कैसे हो मुन्नू बेटा, कहां से आ रहे हैं आप लोग?
1: जी बस घूमते घूमते चले आए, सोचा बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए।
3: बड़ा अच्छा किया। और सुनाइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी ईश्वर की कृपा है, जब से अंबा आई है घर तो जैसे स्वर्ग बन गया है। मुन्नू पर तो वो अपनी जान छिड़कती है।
3: क्यों बेटा मुन्नू, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है ना?
4: अंबा के विषय में और इस सवाल के उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। इतने कम समय में किस प्रकार मुन्नू को अपने रंग में रंग लिया है, यही सोचकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। अरे मगर ये क्या, मुन्नू की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या अंबा ने मुन्नू को आज कुछ कहा है? क्या अंबा मुन्नू को प्यार नहीं करती? कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है। मेरे दिल में जो अंबा की ममतामयी छवि थी उसका चित्र लगता है टूट रहा है।
3: ये तो मुन्नू रो रहा है, मुझे शायद मुन्नू से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अभी शिवप्रसाद की शादी को हुए सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, हो सकता है अंबा को बच्चे को समझने में कहीं कुछ कमी रह गई हो। और फिर अंबा का मां बनने का ये पहला ही अवसर है। लेकिन शिवप्रसाद बाबू तो अंबा की तारीफ करते थकते ही नहीं थे कि अंबा मुन्नू का कितना ख्याल रखती है। लेकिन बच्चे की आंखों के आंसू तो झूठ नहीं बोल रहे। तो क्या शिव बाबू ने मुझसे कुछ छुपाया है? माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम बहुत सी बातें आपस में एक दूसरे को नहीं बताते। हो सकता है कि बच्चे के आंसू माँ के

0: सौतेलेपन का स्पष्ट संकेत दे रहे हों, हो सकता है।
1: मैं तो बड़ा लज्जित सा महसूस कर रहा हूं, आंखें शर्म से गड़ी जा रही हैं। आप और अधिक यहां नहीं बैठना चाहिए। अब अच्छा ज्वाला सिंह जी, हम चलते हैं, इजाजत दीजिए।
0: अब इन्हें रुकने के लिए कैसे कहूं, बड़ी विचित्र स्थिति है।
2: जी जरूर, आते जाते रहिएगा
1: जी। अच्छा चलते हैं।

समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने दिल के क्रोध को कैसे शांत करूं, अंबा से अपना विरोध कैसे प्रकट करूं, इस मासूम के प्रति उसके इस कपट भरे व्यवहार से मेरे दिल पर ऐसा घात लगा है कि जी तो ये चाहता है कि मैं आज घर जाकर मुंह ढककर सो जाऊं, और जब अंबा मुझसे पूछे तो कहूं सिर में पीड़ा है, और जब खाने को कहेगी तो कह दूंगा कि मुझे भूख नहीं है, खुद खा लो। अंबा समझ तो जाएगी कि उसका दिल अपनी बातों के बाड़ों से भीन डालूंगा। हाँ, ऐसा रुलाऊंगा कि वो भी क्या याद रखेगी। लेकिन ये क्या, अंबा का भोला मुस्कुराता चेहरा सोचकर मेरा क्रोध शांत क्यों हो रहा है? क्या मैं उस प्रेम की देवी के प्रति इतना कठोर रह सकूंगा जिसकी एक दृष्टि मात्र, एक मीठी बात पर एक रसीली चुटकी तक मेरी कठोरता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है? ये मेरे हृदय की कैसी निर्बलता है, ये मेरे मन की कैसी दशा है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं?

0: अरे मन्नु आ गए बेटा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? देखो मैंने खाने में तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं।
1: नहीं नहीं, अम्बा पर क्रोधित होना और इतनी कठोरता दिखाना अत्याचार है। उसका स्नेह और ममता देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो मुन्नू से प्यार नहीं करती। हो सकता है मुन्नू श्यामा को याद करके रो पड़ा हो। वैसे भी मुन्नू अभी बालक ही तो है। अम्बा, आज मुन्नू के कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा।
0: क्यों, ऐसा क्या हुआ?
1: अरे आज खजांची साहब के घर गए थे, वो मुन्नू से पूछ बैठे कि तुम्हारी नई अम्मा तो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तो आपके साहबजादे रो पड़े। भाई मैं तो लज्जा से गड़ गया। मुझे स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा।
0: स्वामी, मुन्नू को मैंने जिस कोमल भाव से स्वीकार किया है, हृदय की जिन गहराइयों से स्नेह किया है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
2: मुझे अपने सौतेले कहलाए जाने का
0: शायद इतना कष्ट नहीं होगा जितना ये जानकर दुख हुआ कि मैं अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली माँ ना बन सकी। मैं आगे अपने जी जान से यही कोशिश करूंगी कि मुन्नू की आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहे, उसके दुख का एक एक आंसू मेरी आंखों से निकले। स्वामी, इस बार मेरा दिल रख लीजिए और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए।
1: अम्बा, इतनी गहराई तक तो शायद मैं भी कभी नहीं पहुंचा। तुम्हारी आंखों से निकला एक एक आंसू तुम्हारा मुन्नू के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी सुना रहा है। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूं अम्बा। तुम्हारी आंखों में मुझे साक्षात श्यामा के दर्शन हो रहे हैं। उठो अम्बा, उठो।
3: शिव प्रसाद मुन्नू को लेकर अम्बा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे और इस प्रकार शिव प्रसाद की गृहस्थी के दिन आनंद से गुजरने लगे। तभी अचानक एक दिन शिव प्रसाद दफ्तर से कुछ समय

0: पहले ही घर आ पहुंचे। दरवाजे पर मुन्नू को भीतर की ओर मुंह किए खड़े पाकर वो उसके नजदीक जा पहुंचे।
1: बड़ा ही अच्छा अफसर है, मुन्नू को पता भी नहीं चलेगा और मैं पीछे से जाकर इसकी आंखें बंद कर दूंगा। बहुत दिन हुए इससे मुझे आंख में चोरी खेले हुए। ये क्या मेरे हाथों में ये गीलापन? अरे ये क्या, ये तो रो रहा है। ओह मेरा सिर चकरा रहा है। बेटा बेटा मुन्नू क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो?
2: नहीं अम्मा, मुझे बहुत प्यार करती है इसी कारण मुझे बार बार रोना आता है। मेरी अम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती थी।
1: हाँ बेटा,
2: वो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं अम्मा उनसे भी अधिक प्यार करती है।
1: हाँ मेरे बच्चे,
2: इसलिए मुझे डर लगता है कि उनकी तरह ये भी मुझे छोड़कर ना चली जाए।
1: मुन्नू मुझे तुमसे इस उत्तर की आशा कभी नहीं थी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मैं अम्बा के इस प्यार भरे व्यवहार से स्तंभित हूं जिसने तुम्हारे हृदय पर ऐसा आघात किया है। किसी कवि ने सच ही कहा है कि पवित्र आत्माएं संसार में अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। कहीं रोनी तो इस बालक की जिह्वा से ये शब्द नहीं कहलवा रही। ईश्वर ना करे कि वो मनहूस दिन देखना पड़े। चलो बेटा चलो, तुम्हारी माँ के पास चलते हैं।

0: अरे मुन्नु, मेरा बेटा आजा, मेरे पास आजा, मेरा प्यारा बेटा।
1: अंबा ने स्वयं को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। सर्दी के दिन थे, वो सवेरे भोजन बनाने उठ जाया करती। उसके बहुत अधिक प्यार ने मुन्नू को बेहद नटखट और हठीला बना दिया था। जब तक अंबा भोजन कराने न बैठे, मुंह में निवाला नहीं डालता था। जब तक वो पंखा न झले, वो चारपाई पर पांव नहीं रखता था। उसे झेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता। लेकिन अंबा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। 6 महीने भी बीतने नहीं पाए थे, शायद मुन्नू की बाल दृष्टि ने भावी भविष्य को देख लिया था। अंबा बीमार पड़ गई, उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था। करवट लेने तक की शक्ति नहीं थी उसमें, शरीर तबाह हो रहा था। परंतु मुन्नू के सुबह के भोजन की चिंता उसे अब भी लगी रहती थी। शोक महाशोक देखते ही देखते अंबा को वक्त के क्रूर हाथों ने छीन लिया। मुन्नू अब शोक और वैराग्य की जीवित मूर्ति है। वो अब कभी नहीं रोता। अब उसे कोई भय नहीं रह गया था। संसार की सबसे प्रिय वस्तु खोने के बाद अब उसे कुछ भी खोने का भय नहीं रह गया था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक की 5वीं कड़ी, विमाता। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, माधवा अनंत और मास्टर एलिश मोहन। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जादूगर को सलाम, इस धारावाहिक का भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

0: मीडिया वेव 1593 किलो हर्ट्स पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी शाम की सभा की शुरुआत करते हैं इस घंटे की खास खबरों से।
1: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में नारी विश्लेषण 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नारी विश्लेषण विज्ञान भारत की समृद्ध चिकित्सीय ज्ञान परंपरा है। ये विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान की

गौरवशाली विरासत भी है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों और औद्योगिक संभावनाओं को देश के प्रमुख उद्योग समूहों तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। विश्व बैंक ने चालू

कभी कभी हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो अपने बारे में अच्छा सोचिए, बहुत मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में और चर्चा करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है। जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी पर आश्रित नहीं होते, हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। ऐसे ही अगर हमारा देश और उसके लोग खुद आत्मनिर्भर होंगे तो उन्हें किसी और देश पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना होगा। हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट होंगे कि हम किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड और ज्ञानी हैं कि ऐसे कई आविष्कार वो खुद कर सकते हैं जिससे उन्हें किसी और की मदद की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही एक सोच के साथ 2020 में शुरू किया गया एक अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में जॉली LLB 2 से।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में अभी आपने गीत सुना जॉली एलएलबी से, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए देश को हर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। वोकल फॉर लोकल, ये शब्द हमने कई बार सुना है। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत का एक मुख्य संदेश है, एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इसका अर्थ है कि हमें न केवल स्थानीय उत्पादों यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, उन्हें खरीदना है, उनका उपयोग करना है, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध बनाना है। जब हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारे देश के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगर सशक्त होंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ खुद को दुनिया से अलग यानी कि आइसोलेट नहीं करना है, बल्कि दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक मुख्य धारा से जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो भी लोग अपने हाथों से कुछ भी बनाते हैं उसका ही वितरण किया जाता है, ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हों, उसे खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, स्वदेशी उत्पादों का चयन करके और इनोवेशन को अपनाकर इस अभियान को सफल बना सकती है। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो न केवल देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि संपूर्ण विश्व के विकास में भी योगदान देगा। इसीलिए हम सभी को इस अभियान में सहयोग देना चाहिए और हम सभी इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ और अंतरा मिश्रा की आवाज़ में, दिलवाले से।

दूसरे सुंदर संगीत अभी आपने सुना दिलवाले से, सर थे अरिजीत सिंह और अंता मित्रा के, संगीतकार प्रीतम और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर अभियान के बारे में और कैसे आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और चलिए अब चर्चा करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। दोस्तों, कई बार हम अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं, ना ही बाहर जाते हैं और ना ही अपने परिवार से दोस्तों से मिलते हैं। यही कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। जीवन में काम ज़रूरी है और उसी के साथ जीवन कार्य संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस भी। अगर इसको समझे तो व्यक्ति के काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ और सकारात्मक संतुलन बनाए रखना है, उसे वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि जीवन कार्य संतुलन कहा जाता है। आज के टाइम जहां लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इस संतुलन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत आवश्यक हो गया है। आप कैसे ये कर सकते हैं, कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन की योजना बनाएं। काम के घंटों में केवल काम पर ध्यान दें और घर लौटने के बाद प्रेशर और चिंताओं से दूर रहें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिजिटल डिटॉक्स। कार्यस्थल से निकलने के बाद और वीकेंड्स पर काम से जुड़ी तकनीकों और सूचनाओं से दूरी बनाए रखें। और अब आता है ना कहना सीखें। अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ ना लें। यदि कार्यभार बहुत अधिक है तो विनम्रता से सीमाएं तय करना सीखें और स्वस्थ और रुचियों को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें और अपनी हॉबीज के लिए समय अवश्य निकालें। हम सभी जानते हैं कि काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन काम ही पूरा जीवन नहीं है। अगर आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, असली सफलता केवल एक सफल करियर में नहीं बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में है। व्यक्ति, परिवार और कंपनियों सभी को मिलकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां काम के साथ साथ जीवन के हर पहलू को सम्मान और स्थान मिल सके। अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस जरूर अपनाएं और जीवन और काम के बीच में अपना ध्यान रखें। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत नीति मोहन की आवाज में, फिल्म जब तक है जान से।

नीति मोहन की आवाज़ में भी आपने गीत सुना जब तक है जान से। संगीतकार हैं AR रहमान और गीतकार गुलजार। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। SSC CHL ने लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JSA और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए 2536 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन देने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप ssc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये SSC CHL ने लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी

असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये पद आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर से सोनू निगम की आवाज़ में।

दोस्तों वीर से भी आपने गीत सुना, सोनू निगम की आवाज में, संगीतकार साजिद वाजिद और गीतकार गुलजार। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कई गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
2: कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनते हैं चित्रपट संगीत। माफ कीजिएगा, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जो कभी घने जंगलों, लाल आतंक की आहटों और नक्सलियों की बंदूकों की गूंज के लिए जाना जाता था, आज बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में लाखों रुपए के इनामी कई नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुलिस और प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। लेकिन ये कहानी केवल आत्मसमर्पण तक ही सीमित नहीं, बल्कि इससे आगे पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की भी है। मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति और बालाघाट पुलिस प्रशासन की पहल के तहत अब इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई कढ़ाई, साधारण ड्राइविंग और जेसीबी ड्राइविंग जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ साथ खेती और किसानी के कौशल विकसित करने के कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज कुमार जी। मनोज जी, आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद अभिषेक।
1: तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न मनोज जी, बालाघाट जिले में पिछले कुछ महीनों में जो बड़े इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनको लेकर है। जो क्षेत्र कभी लाल आतंक के साए में रहता था, वहां आए इस बड़े बदलाव और शांति के बयार को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं?
2: ये एक नए भारत की नई सुबह है। इस नई सुबह में हम आप देख रहे हैं कि वर्षों से, बल्कि सदियों से, जो पूरा इलाका बालाघाट हो या बालाघाट के आसपास के जिले हो, जो कि छत्तीसगढ़ से भी लगे हुए हैं, महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है
1: जी,
2: इन नक्सलियों की वजह से तमाम विकास कार्य रुके हुए थे। एक जो आम आदमी की जिंदगी है वो तकलीफ की भरी हुई थी, वो इन दिनों और बल्कि 2025 के आखिरी में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा था कि हम नक्सल मुक्त कर देंगे और वो कर दिखाया, अब वहाँ जिंदगी हौले हौले अपने रफ्तार से मुख्य धारा की ओर लौट रही है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नक्सलियों के जो आत्मसमर्पण के बाद जो पुनर्वास की नीति हमारे प्रदेश सरकार की और प्रशासन की चल रही है, उससे कहीं ना कहीं अब जिंदगी मुख्य धारा पर लौटती दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश शासन की जो नक्सल पुनर्वास नीति की हम बात करते हैं, तो इस सफलता में क्या कुछ भूमिका रही है? क्या आपको लगता है कि पुनर्वास नीति के कड़े क्रियान्वयन और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया?
2: निश्चित रूप से, अगर आप किसी एक ऐसी अवधारणा को ध्वस्त करते हैं जो बार बार ये एस्टेब्लिश किया जा रहा था कि देखिए सरकार आपके नहीं है, हम आपके हैं, आपको शोषण किया जा रहा है, जब इससे मुक्ति मिल गई है तो आपको उनमें भरोसा पैदा करना होगा
1: जी।
2: जो मध्यप्रदेश शासन ने अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए किया, जैसे स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सड़क की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, इन सारे सेक्टर्स पर मध्यप्रदेश शासन ने बेहतर ढंग से काम किया और कर रही है। इन जो तीन जिले हैं बालाघाट के साथ मिलकर, बैहर और आसपास के जो जिले हैं, उनमें उन्होंने जो विशेष पैकेज दिया है
1: जी,
2: इसका लोगों में भरोसा बढ़ा है, नहीं सरकार हमारी अपनी है और ये जो अभी तक हम छलावे में थे, धोखे में थे, अब इससे बर्ग। और कई बार तो ये होता है कि धोखे में नहीं होता, डर भी होता है
1: जी,
2: वो डर भी ग्रामीणों के भीतर से खत्म हुआ है
1: जी।
2: और एक नए भारत की, नए ग्रामीण समाज की जो संरचना और जो चेहरा दिख रहा है, वो बेहद सुकून भरा हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन आदिवासी जिलों में, खासतौर से जो नक्सली प्रभावित जिले हैं, वहाँ पर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है।
2: अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के भीतर भी डर पैदा हुआ है
1: जी,
2: यदि हमने समर्पण नहीं किया तो जान से हाथ धो बैठे, और इसके बाद उन्हें भी लगा कि इस जलालत भरी जिंदगी से बाहर आ जाएं और आम आदमी की तरह जिएं, और सरकार ने उन्हें सहारा और आश्रय दिया है, इसकी वजह से वो भी अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं
1: जी। अक्सर देखा जाता है कि आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजीविका और समाज में पुनर्स्थापित करने की होती है। बालाघाट पुलिस लाइन में चलाए जा रहे जो विशेष सिलाई कढ़ाई और ड्राइविंग के कौशल विकास प्रशिक्षण है, इनको आप कितना कारगर मानते हैं?
2: निश्चित रूप से, जब ये मुख्य धारा में लौट रहे हैं
1: जी,
2: तो मुख्य धारा के बहुत छोटे छोटे टूल्स होते हैं
1: जी,
2: आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बड़ी इंडस्ट्री और कारखाने लगाएंगे
1: जी,
2: लेकिन सिलाई कढ़ाई या ड्राइविंग या इस तरह के जो छोटे व्यवसाय हैं, ये इनको एक आश्वस्ति प्रदान करता है कि अब आप खुद कमाकर खुद अपना जीवन जी सकते हैं
1: जी।
2: अब इनके पास पुलिस का डर नहीं है, गोली और बंदूक का डर नहीं है
1: जी।
2: और ये सामान्य आदमी की तरह रोज उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे काम इनकी छोटी आय जो है इनको उस लाल बंदूक से वो गोलियां भरे से पेड़ों के पीछे छुप रहे हैं गड्ढे में जी रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा लगता है। और डॉक्टर मोहन सरकार जो है इस समय जिस तरह से इनके लिए काम कर रही है वो अपने आप में अनोखा है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, कहीं ना कहीं जब आत्मविश्वास आता है और पुनर्वास के बाद कुछ न कुछ रोजगार के मोर्चे पर ये नक्सली कुछ करते हुए आत्मसमर्पित नक्सली कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भरोसा पैदा होता है कि अब हम मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। हथियार छोड़कर सिलाई मशीन और गाड़ियों की स्टीयरिंग संभालना ये रोजगार का विषय तो है ही, लेकिन सिर्फ रोजगार का विषय ही नहीं बल्कि एक बड़ा मानसिक और सामाजिक रूपांतरण भी है। इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं?
2: ये बड़ा सुखद है
1: जी
2: कि एक जैसे अभी हमने सालों पहले देखा है दस्यु जो उन्मूलन हुआ
1: जी,
2: तो डकैत जो आए जिंदगी में फूलन देवी संसद पहुंची
1: जी,
2: ये कितना बड़ा परिवर्तन है शायद दुनिया का, इसीलिए हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है
1: जी।
2: हमने ये नहीं कहा कि वो अपराधी है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है
1: जी,
2: अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं
1: जी।
2: ये इसी नीति पर हमारी सरकार मोदी सरकार और सब लोग चल रहे हैं। आप देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में तो नक्सली उन्मूलन हुआ है, छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा प्रभावित था वहां भी हुआ है
1: जी।
2: वहां की महिला नक्सलियां अब वो फैशन शो कर रही हैं, रैंप में चल रही हैं, ये कितना बड़ा बदलाव है
1: जी।
2: ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्कि नहीं कहना चाहिए, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहना चाहिए। और वो जो दिख रहा है वो समाज को आश्वस्ति प्रदान करता है कि अब डर भय जैसी कोई चीज
1: नहीं। और इसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारे इस तरीके के नक्सल प्रभावित जिले रहे हैं वहां की जो वन संपदा और वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे लोग भी अब मुखातिब हो पा रहे हैं, उनके मन का भय भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं।
2: खासतौर पे जो इलाके हम चिन्हित कर रहे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं
1: जी,
2: और जिसमें बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित था, वो प्राकृतिक संसाधनों से न केवल वन से बल्कि खनिज से भी वो भरपूर रहा है
1: जी।
2: लेकिन उसका उस तरह से दोहन होके उस तरह से विकास के रास्ते तय नहीं कर पाए थे। और अब ये अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जो बालाघाट है, बैहर है और आसपास के जो जिले हैं उसमें मंडला वगैरह की भी तरफ चले जाएं तो ये सब आपको मिलेंगे। इनका विकास अगले 3 सालों में जो आप देखेंगे
1: जी,
2: और जो हम एक संकल्प लेके चल रहे हैं नया भारत 2047 का, वो हम इसमें पूरी तरह देख पाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा, भविष्य में ऐसा कुछ हो हम लोग इसकी आशा कर

0: रहे हैं। बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा और स्थानीय प्रशासन की इस पहल में जो एक संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, सुरक्षा बलों का यह सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी रूप क्षेत्र में पुलिस और जनता के रिश्तों को भी काफी मजबूत कर रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर?
1: निश्चित रूप से जब लोगों में या समाज में
0: जी
1: जब संवाद का सिलसिला शुरू होता है तो फिर बातचीत अलग किस्म की होती है। संवादहीन समाज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है
0: जी।
1: ये पुलिस के लिए, पुलिस बधाई की पात्र है, जिला प्रशासन बधाई का पात्र है कि वो लोगों से वन टू वन हो रही है
0: जी।
1: हालांकि पुलिस बहुत दोस्त हो जाएगी तो उसे काम करना मुश्किल हो जाएगा
0: जी।
1: लेकिन उसमें भरोसा होना चाहिए कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपकी अपनी है
0: जी।
1: और इस अवधारणा के साथ जो वहाँ के एसपी हैं और जिला प्रशासन जो काम कर रहा है वो सुनने पढ़ने देखने में भला भला सा लगता है कि नहीं, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने की गुंजाइश बाकी है
0: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए सुनते हैं हमारे बालाघाट संवाददाता जनेंद्र बुर्डे की रिपोर्ट, जिसमें जिले के एसपी आदित्य मिश्रा बता रहे हैं कि किस प्रकार से नक्सली पुनर्वास नीति से आत्मसमर्पित नक्सलियों के जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है।
2: मध्य प्रदेश में जो पुनर्वास एवं राहत नीति है उसके तहत उसमें भरोसा करके करीबन 13 नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती एमएमसी क्षेत्र में करीबन 45 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया था। उसके तहत एक महत्वपूर्ण बिंदु जो नीति के अंतर्गत था वो यह था कि ये सभी लोग जो हैं इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे दी जाए और इसके लिए इनको खुद के पैर पे खड़े होने के लिए ये कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके इकोनॉमिक साधन दिए जाए। उसके तहत वर्तमान में जितने भी नक्सल्स यहाँ पर सरेंडर किए थे उनके ऊपर जितना अपराध था उसके प्रपोर्शन में उनको जो फाइनेंशियल राहत रहती है या राशि रहती है वो मुहैया कराई जा चुकी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो यदि वो इकोनॉमिकल रूप से सक्षम रहता है तो मुझे लगता है कि भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकता है। सेकेंड महत्वपूर्ण चीज रहती है कि अधिकतर लोग क्योंकि गाँव के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से गाँव को छोड़ चुके थे तो वहां पर खेती किसानी करना, अन्य चीजों को करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध भी है और उसके लिए प्रयास कर रही है। जैसे हार्वेस्टर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कोई जो बीज है उसकी देखरेख करना, फर्टिलाइजर्स का यूज, इन सब के बारे में भी इनको जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ जिन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सरकार के माध्यम से इसमें प्रति माह का एक स्टाइपेंड मिलता है जिससे कि जिस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग ये करना चाहते हैं वो चीज सीख रहे हैं। इसमें कई लोगों ने टेलरिंग, कई लोगों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई बुनाई का कोर्स, फूड या पापड़ बनाने का, इत्यादि चीजें जो वो अपने क्षेत्र में बेच सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन चीजों पर उनको ट्रेनिंग दी गई है। इसी के साथ कई लोगों ने जब बताया था कि हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है तो वायरिंग का, मशीन का, इसी के साथ साथ जो जेसीबी मशीन होती है या हैवी मशीनरी रहती है उनको चलाने का कोर्स भी दिया गया है यहाँ पर। इसी के साथ मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक उनका स्किल डेवलपमेंट मैपिंग करवाया था कि किस नक्सलाइट को किस प्रकार की स्किल्स हैं और किस प्रकार की चीजों को वो सीखना चाहता है, उसके आधार पर हमने उनका एक अभिरुचि फॉर्म बनवाया था, उसके आधार पर उनको भविष्य में किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस चीजों में उनको हम काम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये रही कि एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती करने के लिए उनको जो जमीन चाहिए उसको उपार्जित कराने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता भी दे रही है। करीबन 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है वो आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुहैया कराई जा रही है जिससे कि वो अपने जीवन को पुनर्वास करके वापस एक शुरुआत कर सके। इसलिए कि जो मोटो है पुनर्वास से पुनर्जीवन का, मुझे लगता है कि उसमें महत्वपूर्ण सारी पहलू महत्वपूर्ण है।
0: इसके साथ ही आत्मसमर्पित नक्सली स्वयं ही अपनी जबानी बता रहे हैं कि ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आई।
3: मेरा नाम राकेश ओड़ी, ग्राम झंडेपार, तहसील कोरची, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य का रहने वाला हूँ। मैं 2003 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी में भर्ती हुआ था और मैं यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्यता अभी वर्तमान में। मैं यहाँ केंद्र राज्य सरकार की जो पुनर्वास नीति के अंतर्गत समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के उद्देश्य और आज के परिस्थिति में, माओ ने उस समय कहा था कि सत्ता बंदूक के नली से आता है, लेकिन मैं इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में लगभग 20 साल मैं अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में मेरे को समाज में आया कि सत्ता बंदूक के नली से नहीं आते, हिंसा से ही नहीं आती है, हिंसा से आम जनता का नुकसानी होता है। आज से हम यहाँ आत्मसमर्पण करके एक नया जिंदगी, अच्छा जिंदगी जीने के लिए हम सोचे। आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी मैं मेरा ओर से संदेश देना चाहता हूँ, शिक्षित हो, शिक्षा के ओर बढ़े, खेल के ओर बढ़े और नशा मुक्त से दूर रह कर एक नशा मुक्त समाज निर्माण करने के लिए, भारत निर्माण करने के लिए आज के युवा आगे आना चाहिए।
4: मेरा नाम वीर, निवासी सुकमा जिला अंतर्गत। मैं पहले तो जंगल में मतलब घर से निकला, गांव से निकला, मतलब घर में नहीं तो गांव में बंदूक पकड़ के घूमने का ये था। तो आज मैं अगर इसमें मैं पुनर्वास योजना के अंतर्गत में आके पूरा जीवन यापन अपना परिवार के

0: में जीना यही मेरा उद्देश्य है। आज भी ये विचार से ही मैं अपने जीवन यापन कर।
1: कहीं ना कहीं जो ये जो नक्सली थे लंबे समय तक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, वो आदिवासी समुदाय के भटके हुए लोग थे। पहले वो भी खेती ही करते थे और लंबे समय तक चूंकि खेती बाड़ी जैसी व्यवस्था से दूर रहे, तो सरकार ऐसे लोगों को भी जो खेती में ही कुछ करना चाहते हैं, खेती के विविध उपकरणों को चलाने के प्रशिक्षण भी दिला रही है, जो कि उनकी आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होंगे।
2: निश्चित रूप से देखिए कि बहुत सारी जो चीज़ें अपन देखने में नहीं आता है छोड़ देते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके थे जब मुक्त हैं तो वहाँ पर दिक्कत क्या थी, सड़क नहीं है
1: जी,
2: स्कूल नहीं है
1: जी,
2: शिक्षा नहीं है
1: जी।
2: तो ये जोड़कर और सरकार ने एक स्कीम ऐसी बनाई हुई है कि इनके उन्नयन के लिए यही नक्सली काम करेंगे
1: जी।
2: इससे क्या हो रहा है कि केवल इनके भीतर का जो एक हीन भावना है वो दूर नहीं हो रही, बल्कि ये लग रहा है कि हम उन्हीं के हिस्से हैं और वो हमसे ज़्यादा समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है और आने वाले समय में इससे बेहतर दिखेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सवाल भी मेरा उसी मुद्दे पर था कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए केवल पुलिस कार्रवाई या आत्मसमर्पण या पुनर्वास की नीति ही काफी नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं जब नक्सलियों ने स्वयं देखा कि अब विकास आ रहा है, आम लोगों में जो भरोसा पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, तो हम भी कहीं ना कहीं उन आम लोगों में से ही एक थे। और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा रोजगार के क्षेत्र में जो काम किए गए इन क्षेत्रों में, उसको देखने के बाद नक्सलियों के मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हुआ और वे अपने पुनर्वास की नीति की तरफ बढ़े और उन्हें आत्मसमर्पण किया। इस कदम को किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात ये होती है, कोई भी अपराधी अपराधी नहीं होता है
1: जी।
2: वो बरगलाया जाता है, उसके भीतर डर पैदा किया जाता है और डर से चले जाता है, तो कई बार पैर वापस खींचना मुश्किल होता है
1: जी।
2: लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया कि आप अपने रास्ते से लौट आएं और एक अच्छी जिंदगी, एक आम आदमी की जिंदगी आप जिएंगे तो सरकार आपके साथ है, अन्यथा जो एक अपराधी को दंड मिलता है वो दंड मिलेगा। तो ये जो दंड और पुरस्कार की नीति थी सरकार की, उसने उनके भीतर आत्मविश्वास भरा और उन्हें भी कहीं ना कहीं एक चाहत तो थी कि एक आम आदमी की तरह जिंदगी जिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ वो रहें। उनका एक सपना था, वो सपना कहीं अंधेरे में खो गया था, लेकिन सरकार के इन प्रयासों से, हौसला देने से वो लौट आए हैं और हम यकीन करते हैं कि वो आगे की जिंदगी और बेहतर ढंग से जिएंगे।
1: बिल्कुल ठीक आपने सर, कहीं ना कहीं जो नक्सली किसी समय सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास में बाधा बनते थे, आज वो इसी विकास में सहभागी बन रहे हैं, विकास के साथ जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर मनोज कुमार जी। आपने बालाघाट के आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, कौशल विकास और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी से जुड़े हर पहलू पर एक सटीक, व्यावहारिक और विचारणीय विश्लेषण हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। श्रोताओं, बालाघाट की ये तस्वीर हमें सिखाती है कि हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हथियारों का त्याग कर कौशल और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुनना न केवल इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों के लिए एक नया उजाला लेकर आया है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के विकास और शांति की एक नई नींव रख रहा है। इसी संदेश के साथ प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर सागर और बुंदेलखंड के लिए वन्य जीव संरक्षण का एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनू से लाए गए दो चीतों को भी मुक्त करेंगे। इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन जाएगा। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में नाड़ी विश्लेषण 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि नाड़ी विश्लेषण विज्ञान भारत की समृद्धि चिकित्सीय ज्ञान परंपरा है। ये विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान की गौरवशाली विरासत भी है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों और औद्योगिक संभावनाओं को देश के प्रमुख उद्योग समूहों तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और कर्मयोगी भारत द्वारा नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सेवा भाव विषय पर कल विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र का संचालन नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बाला सुब्रमण्यम करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम भाग 1387।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
1: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
1: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और

0: प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर हैं, लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
0: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
1: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
0: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोताओ, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओ, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी, जबकि वे जीवित थे।
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
1: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
0: जी
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
0: जी
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महान

0: प्रसन्नता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओं, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
1: जी
0: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा? क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
5: अरे ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं,
6: अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
5: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
5: अपने मित्र को देखो।
4: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
7: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
8: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
0: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
11: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
12: जो आज्ञा आचार्य।
11: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रहे।

0: सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
6: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता
0: है। शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
6: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
8: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र,
8: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
6: हाँ,
8: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
8: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
9: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
5: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
6: बालक, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है?
2: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
5: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
6: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
5: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
4: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
6: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
5: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है।
6: अत्यंत सुंदर।
1: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
6: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
5: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
10: मिथिलेश की जय हो।
4: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
5: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
1: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
6: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
5: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
6: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझा कर स्पष्ट करें।
5: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
6: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
11: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
12: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
11: मुकुल सिंह,
12: वीरेंद्र
11: और हमारी आज की विशेषज्ञ
12: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार।
13: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
14: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं चित्रपट संगीत।

राज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अलका याग्निक, उदित नारायण की, गीतकार थे समीर और संगीत था नदीम श्रवण का।

बचना ए हसीनों उस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लकी अली श्रेया घोषाल की। गीतकार थे अवनीता दत्त गुप्ता और संगीत था विशाल शेखर का।

अरिजीत सिंह, चिन्मयी श्री प्रदा के स्वर में अभी आपने टू स्टेटस इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला

किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज MV रोयाड मामा 2 पर हुए हमले की भी

0: पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले आपको बता दें, इस सभा के शेष कार्यक्रम रात 8 बजे सुनिए। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, 8:35 पर फिल्म संगीत। रात 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशा। रात 10 बजे आप सुनिए फिल्म संगीत। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभय फगरेस का राग मारू बिहाग में बांसुरी वादन।

और अब आपको बता दें कल की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। हमारी कल सुबह की सभा में आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल 7:20 पर। 8:30 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 9:05 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 9:15 पर सुनिए सुगम संगीत, इसमें आप सुनेंगे जयकिशन नारायण से गजल। 9:30 पर प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी और सुबह 10 सुनिए जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिए महिला संसार। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग माला। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सौरव चक्रवर्ती का राग परमेश्वरी में सुरबहार वादन। दिन में 11 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी समय दिन में 11 से होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर होगा संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति भाग 6। दोपहर 1 सुनिए महिला कार्यक्रम और 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। और 2 आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का और 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कल शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, कल शाम की सभा में 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। 6 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 8 सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

बंटवारा, प्रस्तुत करता है मीनाक्षी मिश्रा। 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे सौरव व्रत चक्रवर्ती से राग बिहाग में सुरभार वादन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे कल रात 10:07 पर।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में सीएम यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री कल मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और इंदिरा एकादशी पर ब्यावरा के खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और

0: पोर्टफोलियो उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्ट। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत मध्य प्रदेश सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज पोर्टल पर पंजीयन का शुभारंभ किया और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अगले वर्ष एमपीपीएससी की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी।
2: आने वाले साल युवाओं के लिए, अभी पीएससी 1 बार होती है साल में, लेकिन अगले साल युवा वर्ष हम मनाने वाले हैं। 2 बार पीएससी कराने वाले हैं सारे युवा मित्रों के लिए। 12 मेडिकल कॉलेज, हर महीने 1 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी, 12 नई यूनिवर्सिटियां हमारे राज्य में अपने द्वारा खोली जाएगी, जिनके भरोसे से युवाओं के लिए फिर नया प्रकार का काम मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस निवेश संवाद में प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश अवसरों और औद्योगिक अधोसंरचना की जानकारी दी जाएगी। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले यह संवाद निवेशकों से सीधा संपर्क बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारे विशेष श्रृंखला में बात पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विकास के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार ने कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में अष्टलक्ष्मी में विकास को तेजी से बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 के 10,905 किलोमीटर से बढ़कर 16,200 किलोमीटर से अधिक हो गई है। मिजोरम, मणिपुर और मेघालय पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 9 से बढ़कर 2026 में 17 हो गई है। अंतरदेशीय जल मार्गों और सागरमाला परियोजनाओं से व्यापार को नई गति मिली है। पीएम डिवाइन और पीएम गति शक्ति जैसी विशेष पहलों के जरिए बुनियादी ढांचे के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण सुनिश्चित किया गया है।
4: शिवपुरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रंजीत गुप्ता।
0: महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आज भोपाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए शासन, प्रशासन और समाज को मिलकर प्रभावी और समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 35,000 से अधिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तैनात किए गए हैं और बाल विवाह प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में श्रेणी 2 के शहरों के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, जल सुरक्षा, ग्रीन फाइनेंसिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विचार विमर्श होगा। साथ ही सिंहल 2028 के लिए उज्जैन को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर विशेष मंथन किया जाएगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में इंदिरा एकादशी के अवसर पर आज श्री खाटू श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह मंगला आरती के बाद बाबा श्याम के दर्शन शुरू हुए और दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। इस अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया और उज्जैन से मंगवाए गए 51 किलोग्राम फूलों से दरबार सजाया गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु श्याम निशान लेकर पहुंचे और ढोल नगाड़ों तथा भक्ति गीतों के बीच बाबा के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समिति, पुलिस, नगर सुरक्षा समिति एवं स्वयं सेवकों ने कतार, बैरिकेटिंग और सुरक्षा की व्यवस्था संभाली।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की गई। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज गुना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ हुआ। श्योपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में श्रीराम वाटिका के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में 8 अक्टूबर को दिव्यांगजन रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण और उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुरैना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभियान का शुभारंभ सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने किया। सीहोर जिले में आष्टा ब्लॉक के नगर परिषद कोठारी में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए लक्ष्मी त्रिपाठी से ये लोकगीत।

0: लोकगीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, 7:30 बजे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: भोपाल केंद्र है, लीजिए अब प्रस्तुत है किसान वाणी।
2: किसान वाणी

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: राम राम स्वीकार है। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना की आप सभी जनन के का कैसे हाल चाल चल रहे हैं भैया। अब देखो ना, खरीफ की फसलों की कटाई और गहाई को काम जा टेम पे जोरों पे चल रहा है, वहीं रबी फसलों की बुआई को टेम भी मूड पे चलवा रहा है। उत्ते पे ही तीज त्योहार चले आ रहे हैं। ऐसे में हम सब किसान भाइयों को सबरे काम करने हैं, मनोध्यान जो रखने हैं कि खेती किसानी के कामों से अपनो ध्यान न हटावे। और वो कहता ना कि खेती किसानी को काम अगर सही टाइम पे हो जाए, सही तरीका से हो जाए तो उससे अच्छो कछु नहीं है। तो कहवो हमा जोई है कि सही टाइम पे फसलों की कटाई करें और जब बुआई को सही टाइम आ जाए तब बुआई करें। मनो उससे पहले अच्छे गुणवत्ता के बीज अपने क्षेत्र के लाने, जो अनुशंसित बीज हैं वे उनकी वैरायटी हैं लेके रख लेवे, खाद रख लेवे, अपने बुआई के कृषि यंत्र जो हैं उनकी मरम्मत करके रखें, आयल वायल दे के रखें, जैसे कि जब बुआई को टाइम आए तो हमें देर ना हो, फटाफट बढ़िया अच्छे से काम हो जाए। कैसे भैया कहते ना कि भागम भाग के कामों में गड़बड़ी हो जाते है। भैया बात तो हम बुआई की कर रहे हैं तो हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें

0: किसानों के लाने उच्च गुणवत्ता के अच्छी उपज वाले संकर किस्म के बीज प्रदान करे जाते हैं और अच्छे बीजों के लाने किसानों को बढ़ावा दो जाते हैं। भैया वैसे भी कहते हैं ना कि जैसो बोगे वैसो काटोगे। जय मनसा से भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल शुरू करी है जेखो राष्ट्रीय संकर बीज मिशन के नाम से जाना थे। भैया ये मिशन को उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले संकर यानी हाइब्रिड और उच्च उपज वाले मतलब अच्छी उपज वाले बीजों को उपलब्ध करावो सुनिश्चित करवो है। इनको उद्देश्य जो ही है कि उत्पादकता में वृद्धि होए मतलब फसलों से भरपूर उत्पादन प्राप्त होए, किसान आत्मनिर्भर बने स्वावलंबी बने और भरपूर वाकिलाने उत्पादन मिले। जा मिशन के द्वारा किसानों को प्रेरित करो जाते हैं कि वे संकर किस्म के उच्च गुणवत्ता के अच्छे बीजों को लगाएं जैसे कि अच्छा उत्पादन उनके लाने मिल सके। भैया और बात बीज की और बुआई की हो रही है, मध्य प्रदेश में अगर देखो जाए तो सबसे बड़ो रकबा रबी की फसलों में गेहूं को होते और मध्य प्रदेश को गेहूं पूरी दुनिया में जानो जाते है। खास तौर पे सीहोर को गेहूं, रायसेन जिले को गेहूं और विदिशा को गेहूं और एक नहीं अनेक वेराइटियां हैं जिनका आप लगा के भरपूर लाभ ले सकत हो, भरपूर उत्पादन ले सकत हो। भैया बात निकली है तो हम आपके लाने आज एक बढ़िया बातचीत सुनवा रहे है गेहूँ की उन्नत प्रजातियाँ। बता रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवास। इनसे बातकाव करो है पूनम सरावगी ने और जा बातचीत को सुन के आप जान पे हो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी नई प्रजातियां हैं गेहूं की जिन्हें लगाई जा सकत हैं और जिन्हें लगा के हम लाभ कमा सकत हैं। अर्ध सिंचित, पूर्ण सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रजातियां आप लगा सकत हो, लाभ कमा सकत हो। तो भैया पहले जब बातचीत सुनाते हैं फिर आगे की बात करें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: गेहूँ की उन्नत किस्में कौन सी होती हैं जो हमारे किसान भाई इस रबी के मौसम में बो सकते हैं?
2: हमारे मध्य प्रदेश में रबी मौसम में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूँ लगाया जाता है। चूंकि इस वर्ष कई क्षेत्रों में काफी कम बारिश हुई है तो हमें जो किसान भाई गेहूँ की बोनी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उचित किस्मों का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। गेहूँ के अंदर कम पानी की किस्में अलग रहती है और जो सिंचित किस्में हैं अलग रहती हैं, तो इसलिए आप अपनी पानी की आवश्यकता के हिसाब से जितना किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है उसके हिसाब से किस्मों का चुनाव करेंगे तभी गेहूं में अच्छा उत्पादन लेना ले पाएंगे। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम पानी की किस्में हैं उनमें कुछ किस्में अमर, अमरता, हर्षिता के नाम से आया करती थी, चूँकि ये किस्में कुछ पुरानी हो गई हैं। अभी इन दिनों एक इंदौर सेंटर के द्वारा नई किस्म विकसित की गई है HI 1605, जिसको पूसा उजाला के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छी किस्म है और ये तीन पानी में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा DBW 110 और ड्यूरम वीट के अंदर HI 8737, ये भी किस्में हैं जो कम पानी में पककर तैयार हो जाती हैं। इसी तरह किसान भाइयों अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, आपके पास चार पानी तक आप दे सकते हैं, तो उसके अंदर भी चपाती बनाने वाली अलग किस्में हैं और साथ ही जो ड्यूरम वीट है जिससे दलिया, बाफला, दाल बाटी बनती है वो किस्में अलग हैं। तो हम सबसे पहले जो चपाती बनाने वाली किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे क्षेत्र में HI 1544 जो कि पूर्णा के नाम से जानी जाती है काफ़ी प्रचलित किस्म है और काफ़ी बड़े एरिया में बोई जाती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कर ऐसी किस्में तैयार की हैं जिन्हें हम लोग बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कहते हैं। ये जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं इनके अंदर आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो अगर हम चपाती बनाने वाली बायोफोर्टिफाइड वैरायटियों की बात करें तो इनमें HI 1634, HI 1636, HI 1650 ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं। तो अगर हम इन तरह की किस्मों का प्रयोग में लाएंगे तो हमें अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जहाँ कुपोषण की समस्या है तो ये एक जो बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस समस्या का समाधान भी होगा। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो हमारी नई बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं चपाती बनाने वाले ग्रुप में, जैसे कि HI 1634 है, 1636 है, 1650 है, इन किस्मों का प्रयोग करें ताकि हमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की भी पूर्ति हो पाए। इसके अलावा भी GW 513, GW 322 ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इसी तरह अगर हम कठिया गेहूं की बात करें तो कठिया गेहूं के अंदर HI 8713, 8737

0: जिसको पूसा अनमोल के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ 8759 जो कि पूसा तेजस के नाम से जानते हैं, ये भी किस्में हैं। और जिसमें जो 8759 है काफ़ी प्रचलित किस्म में है और अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोई जाती हैं। कई सालों से ये देखा गया है कि गेहूं के अंदर भी कुछ तरह की बीमारियां आने लगी हैं, स्मट की बीमारी, ब्लाइट की बीमारी। तो अभी हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसने बॉम्बे जो बार्क इंस्टीट्यूट के नाम से है, उनके सहयोग से एक नई किस्म 2024 में विकसित की गई है, जिसको हम लोग TRVW 155 के नाम से जानते हैं। ये चपाती बनाने वाले ग्रुप में आती है और चार पानी में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादन देने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। औसत उत्पादन लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इन किस्मों से मिल जाता है।
1: हम सिंचित क्षेत्र की और असिंचित क्षेत्र की किस्मों की बात करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: हाँ, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आप अर्धसिंचित या कम पानी की किस्मों का लेना चाह रहे हैं, तो इसमें एक जो नई किस्म है पूसा उजाला HI 1605 काफ़ी अच्छी किस्म है, इसको आप ले सकते हैं। और अगर कठिया गेहूं के अंदर आपको कम पानी की गेहूं चाहिए, किस्म चाहिए, तो जो HI 8737 है, पूसा अनमोल के नाम से जानते हैं, या DBW 110 है, ये किस्में काफ़ी उपयुक्त हैं।
1: कुछ ऐसी किस्मों के भी नाम आप बताइए जो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उपज दे सके।
0: जनरली जो कम पानी की किस्में रहती हैं ये जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं, जिसके अंदर हर्षिता है, HI 1605 है, चूँकि ये कम पानी में पककर तैयार होती हैं तो इनकी जो पकने की अवधि भी है दूसरी सिंचित किस्मों की तुलना में जल्दी रहती है, तो ये 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
1: कुछ ऐसी किस्में भी सर आप बता सकते हैं जिनमें कीट व्याधि कम होती है?
0: हाँ, गेहूं में जनरली कीट की समस्या तो काफ़ी कम रहती है, अगर हम बोनी सही तरीके से करते हैं, समय पर बोनी करते हैं, कीट की समस्या नहीं आती। परंतु कुछ क्षेत्रों में कुछ बीमारियाँ आने लगी हैं, तो जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बार्क के नाम से एक संस्थान है, उनके सहयोग से एक नई किस्म तैयार की है TRVW 155। ये काफ़ी रोग प्रतिरोधक किस्म है और इसका उत्पादन भी कम काफ़ी अच्छा है, तो इस किस्म को हम ले सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी मतलब कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो गेहूँ की बोनी है उसके लिए अनुशंसित बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में देखा गया है कि किसान काफ़ी ज़्यादा बीज दर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें एक तो अधिक बीज का नुकसान होता ही है, साथ ही साथ कम टीलर निकलते हैं और पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। कई जगह देखा गया है कि किसान भाई एक हेक्टेयर में 150 किलो से लेकर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ सभी किसान भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप उचित बीज दर मतलब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बीज लेंगे काम में, तो गेहूं में अच्छे टीलर निकलेंगे, अच्छा उत्पादन होगा और जो पौधे के कल्ले हैं वो भी काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद किसान
2: भैया। अब अपन जब बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह से करी है थी पूनम सरावगी ने। गेहूं की उन्नत प्रजातियों की अगर बात करी जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जैसो जैसो क्षेत्र बदलत जाते हैं, जैसी जैसी जलवायु बदलत जाते हैं, जैसी जैसी मट्टी बदलत जाते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र के हिसाब से गेहूं की किस्में जो है वे बनाई गई है। हमारे जहाँ देश की खासियत है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मट्टी बदल जाते है, पानी बदल जाते है और वहाँ की संस्कृति भी बदल जाते है। ऐसी स्थिति है बुंदेलखंड की भी। बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड की सीमा भैया इतनी बड़ी है कि एकों कवियों ने बुंदेलखंड की सीमा को जब बांधो है तो उनने कही है कि भैंस बंधी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, लग भैया है कालपी चपिया रेवा पार। इतनी बड़ी सीमा जब बुंदेलखंड की है और जब बुंदेलखंड में भी भांत भांत की फसलें बोई जाते हैं, भांत भांत को जहाँ पे वातावरण है, इतिहास है जहाँ को, जब बुंदेलखंड की महिमा का कहिए भैया, जब बुंदेलखंड की महिमा अगर हम गाएं और सुनाएं तो एक गीत हमें याद आते है बुंदेलखंड महिमा, और जहाँ गाई है डॉक्टर अरविंद सोनी ने। सुनत हैं और हम भी गौरवान्वित होते हैं अपनी बुंदेलखंड की महिमा सुन के।

भैया बुंदेलखंड महिमा अबे अपन ने सुनी, गाई है ती डॉक्टर अरविंद सोनी ने। खेती किसानी की बात हम कर रहे हैं। खेती किसानी के कामों में समझ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा पैसा भी बचत है, टाइम भी बचत है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जहां बीमारे करे हैं कि हमारे किसान भैया खेतों में कीटनाशकों को छिड़काव करते हैं, नाना प्रकार के खतरनाक कीटनाशक अब खेतों में डाले जा रहे हैं और बेर बेर उनका जई कही जाते हैं कि ऐसे कीटनाशकों को परित्याग करें, उनको ना डारें। एक ही जगह आप जैविक कीटनाशक आ गए हैं उनको उपयोग करें। मनो फिर भी कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण करने के लाने अगर आप ऐसी दवाइयों को उपयोग कर रहे हैं तो उनमें कछु सावधानी रखवो जरूरी है। कैसे के कहते ना कि भैया जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं। और हम ऐसे में आपके लाने एक जा लघु वार्ता सुनवा रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार नेमा बता रहे हैं कि कीटनाशकों को छिड़काव करते टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है और

0: में कौन कौन सी सावधानियां रखना जरूरी है।
1: किसान भाइयों नमस्कार, हम आपको कुछ जरूरी सूचनाएं आज दे रहे हैं। हमारे किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे कभी कभी नुकसान भी होता देखा गया है। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि आ जो अक्षर है इसका बड़ा महत्व है। आ मतलब सबसे पहले असावधानी। अगर छिड़काव करते समय या भुरकाव करते समय हम असावधानी से काम करते हैं तो हमें या हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। दूसरा है अनावश्यक मात्रा। यदि हमारे किसान भाई कम या ज़्यादा जो अनुशंसित मात्रा दी गई है उससे कम या ज़्यादा हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो वो भी हानिकारक है। अविवेकपूर्ण, तीसरा जो बिंदु है ये अविवेकपूर्ण, मतलब ये है कि बिना सोचे समझे मात्र कीड़े मकोड़े देख के ही हमने उपयोग करना चाहा कीटनाशक का, तो उससे भी जितना फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और नुकसान हो सकता है। असंगतता, इसमें भी देखिए आ शब्द आया है, असंगतता मतलब ये कभी कभी हमारे किसान भाई डीलर के कहने पे या अपने मन से दो या दो से अधिक जो इंसेक्टिसाइड हैं कीटनाशक हैं वो मिला देते हैं या किसी दूसरे केमिकल के साथ मिला देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी इससे नुकसान हो सकता है। अनुशंसित, जितनी मात्रा जिस फसल के लिए जब बताई गई है और जितना पानी बताया गया है उतने ही पानी में घोल बनाकर अनुशंसित मात्रा का ही हमारे किसान भाई उपयोग करें, तभी उनको सही परिणाम मिल सकते हैं। अधुनातन, अधुनातन का मतलब ये है कि रिसेंट, मतलब जो नए नए कीटनाशक निकलते हैं, नए नए रसायन निकलते हैं, उनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए और उसकी मात्रा का भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। अलक्षित मतलब ये कि जिस कीड़े के प्रति जिस इंसेक्टिसाइड का या कीटनाशक का प्रयोग करना बताया गया है, अनुशंसित किया गया है, तो हमारे किसान भाइयों को उसी का उपयोग करना है, उसी कीड़े के विरुद्ध में उपयोग करना है। अन्य जो जीव होते हैं या दूसरे खेत में भी जा सकते हैं तो इसका हमारे किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। अविलंब, कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान भाई चूक जाते हैं, जब कीड़ा आता है कीड़े का आक्रमण होता है तो चूक जाते हैं, तो कीड़ा जैसे ही आप देखते हैं और यदि आप देखते हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में आ गया है तो हमें अविलंब जो है अपना निर्णय लेना चाहिए और उसी के हिसाब से किसी कीटनाशी का भुरकाव या छिड़काव करना चाहिए। अर्ध ज्ञान मतलब ये कि किसी भी रसायन के बारे में पूरा ज्ञान आप ले लीजिए, जो ऑफिसर रहते हैं जो वैज्ञानिक रहते हैं उनकी सलाह जरूर ले लीजिए या कहीं आपके पास में साहित्य उपलब्ध है तो उससे पूरा ज्ञान उसके बारे में पूरी जानकारी उसकी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही हमें किसी रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और अनजाना मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे डीलर जो है ज़बरदस्ती आपको कोई भी दवाई पकड़ा देते हैं जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना था, तो ऐसे अनजान केमिकल से अनजान रसायन से हमारे किसान भाइयों को संभल कर रहना चाहिए, बहुत सोच समझ कर उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है बजाय फायदे के। हमारे किसान भाई आजकल जैविक या प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और चूहों के लिए मात्र अभी तक हमारे किसान भाई जिंक फास्फाइड वगैरह उपयोग करते हैं। मेरा कहना ये है कि चूहों का जैविक या प्राकृतिक नियंत्रण की तरफ भी ध्यान रखें। बेसरम या धतूरे के पत्तों में कटे दाने ज्वार मक्का या किसी दूसरे अनाज के मिला के और उसको उबालकर और इनको बिलों के आसपास डाल दें तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कीटनाशकों के छिड़काव में सावधानियां, भैया जहाँ आपने एक लघु वार्ता सुनी डॉक्टर कृष्ण कुमार नेमा जी से जो

0: की सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर से। हम भैया एक बात और बताएं, कह देना कि संगठन में शक्ति है, अगर आप संगठित हैं तो आप बड़े से बड़े काम निपटा सकते हैं, अगर आप एक मत हैं संगठित हैं तो कितनों ही असंभव काम हो वो कर सकते हैं। ये जैसी एक और चीज है जेको हम सब जानते हैं SFAC के नाम से, इखा लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ भी कहो जात है भैया, जो SFAC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किसानों को कृषि व्यवसाय से जोड़बे की और उनकी आय बढ़ावे के लाने एक बड़ी अच्छी पहल है, जाको मुख्य काम है किसानों को FPO FPC बनाबे में मदद करबो, किसानों को सामूहिक रूप से उत्पाद भंडारण और विपणन से जोड़बो, कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत और बाजार तक पहुँचाबे में इनका मदद करबो। आगामी कार्यक्रमों में आपके लाने FPO कैसे बनाएं, FPO के का काम होते हैं, इनकी जानकारी भी हम आपको लेके आए हैं। और मनो अब चलबे की बिरिया हो रही है, चलत चलत आज की कृषि सलाह हम आपको बता देवे। और भैया चलत चलत हम आपको बताएं कि अक्टूबर के महीना में जो मुख्य कृषि कार्य हैं उन पे हमें ध्यान देने हैं, जैसे खेत की अच्छी जुताई करके खरपतवार और पिछले फसल अवशेषों को प्रबंधन करें, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरक की मात्रा तय करें, गेहूं चना मसूर मटर सरसों आदि की प्रमाणित बीज की व्यवस्था करके रखें, गेहूं की बुआई की बात करें तो बुआई को सही टाइम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से मानो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता एवं प्रमाणित बीज को उपयोग करें और बीजोपचार बुआई के टाइम पे जरूर करने हैं। चना और मसूर की भी बात कर लें, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से चना और मसूर की बुआई की तैयारी शुरू कर दे, खेत में पर्याप्त नमी होबे पे ही बुआई करें, बीज उपचार से जड़ एवं बीज जनित रोगों से बचाव में आपके लाने मदद मिलेगी तो बीज उपचार जरूर करें। सरसों की बुआई करे वाले किसान भैया ध्यान रखें, अक्टूबर में सरसों की बुआई को सही टाइम शुरू हो जाते हैं, खेत में जल निकास की व्यवस्था करके रखें, प्रमाणित और अनुशंसित किस्म के बीजों को उपयोग करें। हाँ, सोयाबीन की फसल खेत में खड़ी है, जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह पक चुकी है वे फसल की कटाई करें और सही तरीके से कटाई करें, मड़ाई करके सुरक्षितों को भंडारित करके रखें, सोयाबीन को भंडारण दानों को अच्छी तरह सुखावे के बाद ही करें। सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करी जाए तो रबी की फसल में पहली सिंचाई और आगे की सिंचाई मिट्टी की नमी और फसल की अवस्था को देख के करबो चाहिए, शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दो चाहिए। तो भैया जेतु थी आज की कृषि सलाह, और अब आज के जो मंडी के भाव हैं वे हम आपको बता दे, मैं इंदौर कृषि उपज मंडी में जो अनाजों के भाव चल रहे हैं, सोयाबीन 4000 रुपया न्यूनतम अधिकतम 5925 रुपया प्रति क्विंटल, इंदौर मंडी में गेहूं को न्यूनतम भाव 2541 रुपया अधिकतम 3070 रुपया प्रति क्विंटल है, कल इंदौर मंडी में तुअर यानी अरहर को न्यूनतम भाव 7905 रुपया तो अधिकतम 8250 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव, चना न्यूनतम 4300 रुपया अधिकतम 7095 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर को न्यूनतम भाव 4950 रुपया अधिकतम भी जोई थो, मक्का को न्यूनतम भाव 1600 रुपया अधिकतम भाव भी जोई थो, मूंग को न्यूनतम भाव तो 6405 रुपया अधिकतम भाव 6570 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को न्यूनतम भाव 4000 रुपया रहो अधिकतम भाव बिको 5700 रुपया प्रति क्विंटल। जे कछु भाव थे मंडी में रहे अनाजों के, और आगामी दिनों में सोयाबीन के भाव में भी बढ़ोतरी होबे की संभावना बताई जा रही है, साथ ही चना के भाव में भी बढ़ोतरी होबे को अनुमान दर्ज करो जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि जैसे जैसे मंडियों में आवक बढ़ रही है भाव में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल है गो, तो आप जा कार्यक्रम से जुड़े रहो, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लाने अनाजों के भाव की जानकारी तो देते ही है, संगे संगे समसामयिक कृषि जानकारी और विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पे खेती किसानी आधारित बातचीत भी हम आपको सुनवाते हैं। तो अब आज के जा कार्यक्रम में बस इतो ही, अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को दियो आज्ञा स्वीकार करो, दो ही हाथ जोड़े की राम राम जय सिया राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है, इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से। कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी।

0: हाँ, पार्टी भी तंदुरुस्त
1: और लो। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: ये था कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की धाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर केजी सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार,
5: धन्यवाद।
3: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो। G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
4: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है।

ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है, जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने

0: भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दोराय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या? मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा जीडीपी विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहां कर रहे हैं, निवेशक यहां आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
1: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चुकी हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी, मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी हैं। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो पूसा में हुई थी और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था, एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती, जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 तक, वो वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, इसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह

0: तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
1: ये जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, तीन और ऐसे पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना, कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
2: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ही यह यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार के जगह सत्ता में जो विनम्रता होनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृत काल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें यह बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहां सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है, जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी, उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य

0: में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्ट लक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहाँ पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहाँ पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बढ़ा है। तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है इसी के पीछे यही रणनीति है कि वहाँ पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहाँ पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहाँ पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है। तो एक भारत के एक अलग पहचान दी गई है, को भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है। वहाँ पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहाँ पर लगाए गए हैं। वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज़ नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी हैं और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन हैं, चाहे वो डिफेंस के हों चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी, और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी NCR में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए, ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि एक घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा, क्योंकि

0: एंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी, और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है, और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो दो दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन दो दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं, और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है?
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहाँ, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी, और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहाँ जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है, अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है, और हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां, बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों। तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टूडे फॉर आवर टुमारो। क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश, एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिसकर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है।

0: ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीज़ें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आज तक साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति में मनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है, भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं, कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
0: निश्चित ही देखिए, जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था, लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
2: देखिए, तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया, कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन हैं, चाहे नए एयरपोर्ट हैं या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया, तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस 4 अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसके भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
0: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में

0: भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये गीत था फिल्म विश्वात्मा से, जिसके लिए आवाज़ थी साधना सरगम की। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने

0: वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
1: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार

0: ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam, results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hudson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting. Chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद न्यू रेलवे लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। To ensure that all these developments are planned in an integrated and unified manner, the Prime Minister launched the PM Gati Shakti National Master Plan few years ago. Now, keeping future requirements in mind, an Integrated Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा.
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: 10,000 करोड़ रुपीस MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस फोकस एम्स टू सपोर्ट MSMEs इन leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
2: Manufacturing se related MSMEs jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
1: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi

0: panel's decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Belgian-born scientist Francis Halson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असगर अली। हुकूमत ने कसीर रुखी मंसूबाबंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवस्त कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे एमएसएमई शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहान हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मुसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रुपये के माहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के ज़िमनी चुनाव की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। वोटों की गिनती जुमे के रोज़ होगी। बेल्जियम में पैदा हुए साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को फिजिक्स में 2026 के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के क्याम को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इतलात व नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे में जब मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP 7-8% की शरह से तरक्की कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुल्क भर में कई शाहराहें, रेलवे लाइनें, आबी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और नई बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं। मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी अगले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि ये इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदरों वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और कल वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। इतलात व नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत के इस्तेकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबीना मीटिंग में के लिए फैसले एमएसएमई शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले एसएमईज को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हम आहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को उसअत देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने

0: के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे पर अंदरून मुल्क डिज़ाइन करदा, तैयार करदा और मैन्युफैक्चर किए गए साजो सामान को ख़रीदने के तहत नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। कम अज़ कम 68% अंदरून मुल्क तैयार करदा साजो सामान के साथ ये प्रोजेक्ट MSME समेत मुख्तलिफ भारतीय सनतों की सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई करता है। वजारत ने कहा कि 3 बरस से ज्यादा के अरसे में ये प्रोजेक्ट रोजगार के मौके पैदा करेगा। ये भारतीय बहरी सिक्योरिटी ढांचे और दिफाई सलाहियतों को फरोग देने के साथ साथ अंदरून मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जारी कोशिशों के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। दिफाई तहरीक और तरक्की के इदारे DRDO ने देसी साख्त के तैयार करदा हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म HAPS की कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। वजारत दिफा ने बताया कि भारतीय फजाइया सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर शहरी इदारों के तालमेल के साथ ये आजमाइश अंजाम दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब आजमाइशी परवाज पर DRDO टीम को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा ने कहा कि ये इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाने में मुल्क के आत्मनिर्भर भारत सफर का अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि UPI के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: भारत के डिजिटल अदायगियों के इको निज़ाम में अक्सर तब्दीली आई है। ये हर शहरी के लिए अदायगी के एक सहल और महफूज निज़ाम तक रसाई के नज़रिए पर मबनी है। अदायगियों का मरबूत निज़ाम UPI भारत के अदायगियों के कौमी कॉरपोरेशन NPCI ने तैयार किया है और ये भारत के डिजिटल अदायगियों के सिलसिले में एक इनकलाबी कदम बनकर उभरा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि UPI अब सिर्फ हमारी सरहदों तक महदूद नहीं है।
2: UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: 25 अगस्त 2016 को UPI का आगाज किया गया था और महज एक दहाई में डिजिटल अदायगियों के सिलसिले में UPI एक यकसर तब्दीली वाला कदम साबित हुआ, जिससे अदायगियां तेज, सहल और काबिल रसाई हो पाई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के एक तालिब इल्म जतीन ने कहा कि जब से UPI उनकी जिंदगी का हिस्सा बना है, तब से चीजें आसान हो गई हैं।
3: जब से UPI मेरी लाइफ में आया, तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक कोड है और उसमें UPI से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया की बरवक्त अदायगी का तकरीबन 49% हिस्सा UPI का है। दिल्ली से भानु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों और आसाम की एक लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। तमिलनाडु के मदुरान तकम और धारापुरम, पुडुचेरी के थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में वोट डाले गए। आसाम के नागांव लोकसभा सीट में भी वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में कायद हिजब इख्तलाफ राहुल गांधी के जरिए बार बार भारतीय इंतखाबी कमीशन और दीगर आईनी इदारों को निशाना बनाने पर उनकी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि सियासी पार्टियों को अवाम के फैसलों को कबूल करना चाहिए और अवाम की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवामी हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद आईनी इदारों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि आईनी इदारों को निशाना बनाना मुल्क और कांग्रेस पार्टी किसी के मफाद में नहीं है।
4: कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला है और उसमें से 2 साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
0: इससे पहले आज अपोजिशन पार्टियों ने खसूसी नजरसानी के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट से इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन तक एहतजाजी मार्च निकाला। ताहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतखाबी कमीशन की जानिब बढ़ते हुए उन्हें आकाशवाणी के करीब रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर हामियों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने इहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उन कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया जो आकाशवाणी भवन के इहाते में धरना दे रहे थे। आज अपोजिशन के एहतजाज के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि सहपहर 4 बजे तक किसी भी सियासी जमात ने अपने नुमाइंदों के जरिए उससे मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। एक प्रेस बयान में कमीशन ने कहा कि ताहम सहपहर 4 बजे उसे दिल्ली पुलिस से इतला मिली कि राहुल गांधी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफद कमीशन से मिलना चाहता है और एक मेमोरेंडम देना चाहता है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि 240 अरकान पार्लियामेंट के साथ इस मीटिंग की दरख्वास्त की गई थी और मुजवजा मकाम पार्लियामेंट एनेक्सी था। इंतखाबी कमीशन को ये दरख्वास्त गैर मामूली लगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कमीशन ने कहा कि जाब्ते के मुताबिक ऐसी मीटिंग इंतखाबी कमीशन के इहाते में होती हैं। तिब्यात का 2026 का नोबेल इनाम बेल्जियम में पैदा होने वाले साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को दिया गया है जिन्होंने जुनूबी खुद पर मौजूद बर्फ के एक बड़े जखीरे को खला से ज़मीन तक पहुंचने वाले पुरिसरार जर्रात यानी न्यूट्रिनोस की दरियाफ्त के लिए एक डिटेक्टर में तब्दील कर दिया। 82 साल प्रोफेसर हेल्जन अमरीका की विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं। उन्होंने उस बैन अल-अक़वामी टीम की क़यादत की जिसने जुनूबी खुद पर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी तैयार की। ये एक न्यूट्रीनो डिटेक्टर है जिसने 2013 में काम शुरू करने के कुछ ही अरसे बाद ज़मीन के बाहर से आने वाले इंतहाई ज़्यादा तवानाई वाले न्यूट्रीनोस की निशानदेही की थी। हुकूमत ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर चीफ मार्शल के रैंक पर 29वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर किया है। ये तकरीरी 31 अक्टूबर की दोपहर से नाफिजुल अमल होगी। जनाब दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह लेंगे। मर्दों के क्रिकेट में 5 T20 मैचों की सीरीज के तहत लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। वेस्ट इंडीज की टीम ने 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। अब से कुछ देर पहले भारत ने 5 ओवर्स में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबाबंदी को बरूए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवसित कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे MSME शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। مرکزی کابینہ نے سربراہان حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

इज्जत फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हेमलता के स्वर में और शैलेंद्र सिंह के स्वर में अभी आपने अंखियों के झरोखों से इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने।

1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था आर डी बर्मन का।

हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल के स्वर में, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे अभय फगरे का राग मारू बिहाग में बांसुरी वादन।

0: ये था शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभय फगरे से राग मारू बिहाग में बांसुरी वादन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said,